ना मुझको गुस्सा ना दिला, तुझसे फरियाद करूं ले तेरे पाँव फरूं, कहना मेरा मान ले तू, ये भी अब जान ले तू, ये भी अब जान ले तू, जान ले तू, जान ले तू। थाकी गयो फरी पर नहीं समझ तो बेशरम। हाँ अब भी अगर तू चुप ना हुआ तो तोड़ दू।

0: लाइका गोल्ड सी टीवी एंड सी फाइव प्राउडली प्रेजेंट हमारे राम प्रोड्यूस्ड बाय फेलिसिटी थिएटर इंडिया और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एस रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9-12 July इवेंटिम अपोलो हैमर स्मिथ हमारे राम
1: बुक योर टिकट्स नाउ ऑन eventimapollo.co.uk एंड यूज कोड हमारे राम 10 फॉर 10% डिस्काउंट ऑन ऑल शोज एंड टिकट्स
0: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक Radio.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
3: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 02023963-5757. Greens by Danube. Prime location.
2: High appreciation.
3: In Dubai.
4: ताज़ा करें अपनी यादें. Leica Gold के साथ.

0: ये है लाइका गोल्ड।
1: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान,
2: देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
1: डेजर्ट सफारी,
2: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
1: साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
2: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
3: साउथहॉल ट्रेवल, at all protected.
4: Are we there yet?
5: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
4: Relax, I've booked the Uber already.
5: How? My roaming isn't even working yet.
4: I switched to Simzy before we left London.
5: Simzy? Since when are you the tech expert?
4: Since I decided I want a stress-free holiday.
6: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
7: T's and C's apply.
8: Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
9: Classic Nagme, aapke apne Leica Gold par.

सुनिए हाथ वै सगा नानक भगतां सदा विगास सुनिए दुख पाप का नास मन्ने की गत कही ना जाए जे को कहे पिछे।

मन बुद्ध मन्ने सगल पवन की शुद्ध मन्ने मोह चोटा ना खाए मन्ने जम के साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक ना पाए मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए मन्ने मग ना चले पंथ मन्ने धर्म सेती सनबंध।

मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोहन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भखाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखे की ता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस भावे सोई करसी हुक्म ना करना जाए सो पातशाह साहिब नानक रहन जाई।

अनाहत जुग जुग एक वेश आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची।

ना जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगति छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवार।

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
1: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट travelhubworld.com
3: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
4: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share, and we give the rest back to you as cashback.
3: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
4: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915 or visit cashbackremortgages.co.uk.
3: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
5: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram.
4: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code HamariRam10 for a 10% discount on all shows and tickets.
5: Exclusive radio partner, Like रेडियो
6: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com टीज एंड सीज अप्लाई
7: When your husband's got his heart set on making the doer-upper open plan, enjoy every thudding second of it.
8: Yes!
7: Be a step ahead with Barclays Premier, with our exclusive mortgage rates. Barclays, backing your future. Eligibility criteria apply. All mortgages are subject to application, financial circumstances and borrowing history. T's and C's apply. New Barclays mortgage applications only.
9: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
10: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
11: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं ऑन एयर हो ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com
12: नमस्कार रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा

0: experienced tour operators for air, coach and cruise holidays. So now, whenever you plan for a holiday, plan with Serene Holidays.
1: Call Deepthi Pandya today.
0: 0116-266-2481. For more information, log on to sereneholidays.co.uk.
2: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
3: Discover Malta and Gozo with a Twin Center Island Escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
4: Carotino Better Ghee. The healthier, low-price, cholesterol-free butter ghee alternative. Carotino Better Ghee. Available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Carotino Better Ghee.
5: Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. The Leica Radio Network. The perfect soundtrack for a British summer heatwave. Leica
6: Gold. Laga gori gujariya se

0: तुम?
1: जी हाँ मैं। आपने जरूर कहीं ना कहीं मुझे देखा होगा। मेरा नाम आनंद है और मैं उषा से प्यार करता हूँ।
0: तुम जानते हो एक भोली भाली लड़की को बहकाना गुनाह है।
1: इस गुनाह को हम मोहब्बत कहते हैं।
0: तुम्हें शायद गलत फहमी है कि उषा तुम्हें जिंदगी में मिल जाएगी।
1: उषा मेरी पिछली जिंदगी में भी थी, उषा मेरी इस जिंदगी में है और मेरे आने वाली तमाम जिंदगियों में उषा मेरी ही रहेगी।
2: WhatsApp message like a gold now on 0744-232323.
3: So he chose Usha over Shoba, hey?
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
3: Anyways, currencies are trading at 127.29 Indian rupees, 371.4 Pakistani rupees and 446.69 Sri Lankan rupees.
4: Like Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Across Greater London. This is Kajal on Breakfast.
3: So inspired by the 1991 film Sleeping with the Enemy, 30 years we're celebrating of the same Bollywood film, Darar, starring Juhi Chawla, Rishi Kapoor and Arbaaz Khan.

0: का गोल्ड travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
1: विजिट travelhubworld.com.

0: as tour operators for air, coach and cruise holidays. So now, whenever you plan for a holiday, plan with Serene Holidays.
1: Call Deepthi Pandya today.
0: 0116-266-2481. For more information, log on to sereneholidays.co.uk.
2: आपके सामने एक रेड बटन है। नहीं दबाना था।
3: The madness is back. धमाल 4.
4: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
3: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in धमाल 4. Directed by Indra Kumar.
5: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी?
3: Get ready for the biggest family entertainer in cinemas worldwide from the 10th of July.
6: पता नहीं ऐसे dangerous situations में automatically आके कैसे आ जाना?
7: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
8: बिजनेस के कार्ड पेमेंट चार्जेस देख के कभी सोचा है
9: यार मैं कहीं ज्यादा तो नहीं दे रहा? पता लगाने का एक ही तरीका है, अपना लेटेस्ट स्टेटमेंट TW Pays को भेजिए और 24 आवर्स में पाइए एक फ्री कंपैरिजन कोड। विजिट twpays.com/laika या कॉल कीजिए 0203129-9840। TW Pays, हर ट्रांजैक्शन पर ज्यादा बचत।
10: Laika Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Laika Gold. The perfect soundtrack for a British summer heatwave. Gold Breakfast with Kajal.

0: स्वागत है संगीत प्रेमियों का
1: एंटरटेनमेंट की दुनिया में।
0: माय नेम इज रवि शर्मा, लौट आया हूं भाई छुट्टियों से। थैंक यू वेरी मच रितु शर्मा, आपके रहते जो है ये छुट्टियां नसीब होती हैं। सोमवार वर्ष 2026 के जुलाई महीने की 6 तारीख, बाहुबली का जन्मदिन। ये बाहुबली कौन है? बाहुबली का जन्मदिन भाई। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू यू बाली भाई। आप बाली हैं तो मैं सुग्रीव हूं। रामचरितमानस के पात्र, आपकी लंबी उम्र की दुआओं के साथ प्रोग्राम का आगाज करते हैं। और साहब आज क्या कहते हैं शायरी में?
2: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
3: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
4: Travel Hub.
3: At all protected.
2: Leica. Feel good classics all day. Leica Gold.
0: ये रूप शाम सहर की तरह बदलता नहीं, ये प्यार प्यार ही होता है, प्यार रहता है। हमारी जात की मसरूफियत का देख आलम, तू पास ना हो तेरा इंतजार रहता है। तेरे ही रुख की बलाएं निगाह लेती हैं, ये जाने दिल के तुझी पर निसार रहता है। तू पास ना हो तो भी तेरा इंतजार रहता है।

0: हो गया। तो साहब ये थी शुरुआत, संगीत और गीत और शब्दावली और उसके बाद साजों की ये खनखनाहट देर तक चली। हमने कहा भाई पूरा आनंद ले, गीत को पूरा सुने, क्या पता आगे कुछ और शब्द आ जाए, अल्फाज आ जाए। वेल बैक टू बैक संगीत से शुरुआत होती है कार्यक्रम की, सभी कार्यक्रमों की। और साहब दो गीत हमने परोसे और मुझे पूरा यकीन है पहला गीत आने से उसके आए बाहर फिल्म कौन सी थी, जीने की राह, जितेंद्र की वो फिल्म भाई, जिसमें यूँ कहिए कि जितेंद्र उन दिनों सुपर हीरो होते थे। बाद में जब उनसे पूछा गया, ये थोड़ी देर की बात है, कि भाई आपकी नज़र में सुपरस्टार कौन है, मेगा स्टार कौन है, पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, तो उनका जवाब था एक से लेके दस तक अमिताभ बच्चन ही बच्चन है। सदी के महानायक का उन्होंने जिक्र किया भाई, हालांकि वो अपने दौर में बहुत क्या कहें कि लोकप्रिय सितारे रहे हैं फिल्मी दुनिया के, लेकिन अमिताभ के आने के बाद देर तक एक छत्र राज्य रहा उनका। और कोई कह रहा था कि भाई उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है, भाई हम दुआ करते हैं अमिताभ जी के लिए और प्रार्थना करते हैं कि वो पर्दे पर दिखाई पड़ते रहें, उनके संवाद सुनने को मिलते रहें, उनकी आवाज़ गूंजती रहे सिनेमा हॉल में। राइट साहब, दो गीत सुनवाए। दूसरा गीत जो अभी तेरा जलवा मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार गा रहे थे और फिल्म का नाम था आपके दीवाने। और साहब आपके दीवाने हम हैं, जाने पहचाने आपके हम हैं और इसीलिए लौट आए हैं छुट्टियों से आपसे मिलने के लिए। राइट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द रेट ऑफ पाउंड अगेंस्ट इंडियन करेंसी।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो रेट दिया जा रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके एसबीआई यूके, आज एक पाउंड के बदले दे रहे हैं एग्जैक्टली 127 इंडियन रुपीज। डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच, ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीस एंड सीज अप्लाई। दिस इज द Leica रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स।
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates, and for other legal requirements.
0: और लीजिए साहब, ये फुटबॉल का महाकुंभ चल रहा है और इंग्लैंड की स्थिति सब जानना चाहते हैं। मतलब कई लोग जो है अपनी नींद का बलिदान करके जो है इस मैच से जुड़े रहे हैं और मैच में काफ़ी आशंकाएं, संभावनाएं वो भाई बनती बिगड़ती रहीं। आपको बता दें कि इस समय इंग्लैंड विश्व कप की, वर्ल्ड कप की आखिरी 8 टीमों में शामिल हो चुका है और ट्रॉफी की दौड़ में बना हुआ है। यदि इंग्लैंड के संभावित सेमीफाइनल मार्ग और अब तक के भाई प्रमुख खिलाड़ियों के प्रदर्शन का जिक्र होता रहेगा। आपको बता दें कि जो क्वार्टर फाइनल की 8 टीमों में इंग्लैंड शामिल हो गया है। और भाई राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड ने DR कोंगो को 2-1 से हराया था। राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड ने मेक्सिको को कल हरा करके 3-2 से, 2 के मुकाबले 3 गोल से हराकर क्वार्टर फाइनल में एंटर कर लिया है। जब मुझसे पूछने आए थे हमारे रेडियो वाले भाई साथी, बोले जी आपको क्या लगता है क्या होगा, ये वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें क्या होगा, मैंने कहा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इंग्लैंड कम से कम भी 3 विकेट से जीतेगा। कहने लगे इसमें विकेट नहीं होते हैं, इसमें गोल होते हैं। मैंने कहा भाई हम तो विकेट जानते हैं। तो साहब 3 विकेट से बोला था, 3 गोल से जीत गए, 2 के मुकाबले 3 गोल से इंग्लैंड ने जीत हासिल किया। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंग्लैंड की टीम। और भाई अभी तक सेलिब्रेशन जारी है, अब अगले मैच पर निगाहें लगी हैं।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
0: ये भी बता दें भाई कि यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद अवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका। ये भाई लाइका शब्द तो आपके दिलों पर लिखा होना चाहिए, जुबान पर टिका होना चाहिए, क्योंकि ये कई फायदे करवाता है। जिक्र कीजिएगा अगर आप रैक लॉ से कोई कानूनी मशवरा चाहते हैं।
1: गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
3: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।

0: जो वादा किया वो निभा रहे हैं। भाई आपकी पुकार पर लौट के आ रहे हैं, आ गए हैं, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, आना पड़ेगा। भाई आ तो गए और क्या, घर तक पहुंच जाए पहुंच जाएंगे, घर तक भी बुला के तो देखो। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, सदाबहार गीत, भाई जो कभी पुराना नहीं लगेगा आपको, बड़ा ताज़ा ये गाना लगेगा। और ये गीत था फिल्म ताजमहल से 1963 में जो फिल्म रिलीज हुई थी। भाई अब ये गीत सुनवाने के बाद ये भी बता दें कि कौन पहुंचा रहे थे आप तक।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: और रवि शर्मा फूल के कुप्पा हो रहा है क्योंकि आपके संदेश आ रहे हैं जो कह रहे हैं वेलकम बैक। भाई थैंक यू सारा पटेल जी, सो नाइस ऑफ यू मिसेस शेख, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी हमें बख्श दी आपने जिंदगानी। और नीला चौधरी जी, अनिल सोनी वियाना में, जगदीश जी बुशी में, पम्मी सिंह स्लाव में, हंसा वोरा जी, जहीर खान साहब, थैंक यू वेरी मच। निर्मला जी कह रही हैं बाली भाई का जन्मदिन मत भूलना। कैसे भूल सकते हैं साहब, हमें तो इंतज़ार देखना, वो पकोड़े समोसे कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आएंगे, मैसेज पहुंच जाएगा उन तक। भाई याद दिलाना हमारा फर्ज बनता है, बाकी आगे वो समझदार हैं। हाँ। और केटला बरसना थी गया दिख रहा, मैंने खबर न थी, झगड़ा नहीं करना हमने सुन लिया। और ये कौन है, प्रतिभा जी कहते हैं आपकी आवाज़ लौट आई है वापस, आपकी आवाज़ के बिना प्रोग्राम हमें अधूरा सा लगता था। ऐसा नहीं, वो भी बहुत मीठी आवाज़ थी जो कवर कर रही थी, भाई मैं खुद सुनता था और कैन यू बिलीव कि इतना क्लियर सुनाई पड़ रहा था। मैं था डोमिनिकन रिपब्लिक, ये देश है उधर, क्या कहते हैं, साउथ अमेरिका में, और साहब वहाँ जो जिस तरफ ये वेस्ट इंडीज़ गुयाना वगैरह कंट्री हम, बहुत गर्मी थी वहाँ, लेकिन यहाँ के पता लगा कि जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, यहाँ भी गर्मी कम नहीं है। हॉट तो साहब कैरेबियन कंट्रीज़ का वो माहौल, वो गर्मी और वो सब कुछ अच्छा था, रिजॉर्ट में जो सारी सुविधाएं थी। और मैं और मेरी पत्नी भाई 10 दिन लगा के लौटे हैं, तो अच्छा लग रहा, वो भी अच्छा था, यहाँ भी अच्छा है, सब तरफ अच्छा ही अच्छा है। लेकिन कहती है आपकी आवाज़ मिस किया, भाई अच्छा लगता है। कर कोई कोई कहता है कि नहीं नहीं मिस किया हमने, बंद करो
4: कौचू, बंद कर रेडियो,
5: नहीं करूँ कि तूने,
4: अरे कौचू बंद कर, मैं टीवी जोऊँ छे।

0: તમારે જે જોવું હોય તે જુઓ, સમજા ને? જ્યાં સુધી રવિ શર્મા ને ન સાંભળું ને ત્યાં સુધી રેડિયો બંધ નહીં કરું, નહીં કરું, નહીં કરું.
1: એટલે
0: શું? વાર છોડીશ, ઘર છોડીશ, પણ રવિ શર્મા ને નહીં છોડું. ના, એટલે રેડિયો માં રવિ શર્મા ને સાંભળવાનું નહીં છોડું.
2: થેન્ક યુ વેરી મચ. રવિ શર્મા છોડવાનું વસ્તુ નથી, છોડવાનું વસ્તુ નથી ભાઈ. જો બાંધ કે રખિયેગા અપને દિલ સે. તો બહોત બહોત શુક્રિયા આપકા પ્રતિભાજી. કહેતી હૈ વો જો ઔરત કહેતી હૈ ના કે ઘર છોડું, વર છોડું, રવિ શર્મા કો નહીં છોડું, કહેતી યે બાત હમ સબ પે લાગુ હોતી હૈ, સર આંખો પર. રીટાજી થેન્ક યુ વેરી મચ. ઓર સલમા મેડસ્ટોન મેં આપકા ભી યહી વિચાર હૈ, ઓર એજાજ ભાઈ ચેશમ મેં હૈ, આપ ભી હમારે સાથ જુડે હુએ હૈ. થેન્ક યુ વેરી મચ રાની, સો નાઇસ ઓફ યુ. આપકી ભી હૈ વહી કહાની. હરીશ રોડા સાહેબ, અરુણા ભૂપેન્દ્ર પટેલ, થેન્ક યુ ઓલ. નાવ ધ ટાઈમ ઇઝ ટુ બ્રિંગ યુ ધ ન્યૂઝ. लाइका रेडियो नेटवर्क. अब आप रवि शर्मा से आज की खबरें सुनिए. सबसे बड़ी खबर तो भाई छाई हुई है, वही फीफा वर्ल्ड कप में ब्राजील पर नॉर्वे की ऐतिहासिक जीत के बाद इसके स्टार खिलाड़ी एरिंग हॉलैंड ने कहा है कि उनके देश के इतिहास के सबसे अविश्वसनीय दिनों में से एक था ये. लेकिन जिक्र करेंगे भाई इंग्लैंड का, जो इंग्लैंड ने जीत दर्ज की है फीफा वर्ल्ड कप के 2026 के प्री क्वार्टर फाइनल में. इंग्लैंड ने मैक्सिको को 3-2 से हरा कर आखिरी 8 में जगह बना ली है. दूसरे हाफ में 10 खिलाड़ियों के साथ खेलने के बावजूद, एक खिलाड़ी कम था उसके बावजूद, मैच पर इंग्लैंड की पकड़ रही. 54वें मिनट में इंग्लैंड के डिफेंडर जॉरेल कांसा को रेफरी ने रेड कार्ड दिखाया, जिससे इंग्लैंड को 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा. लेकिन साहब दम लगा के खेली इंग्लैंड की टीम. जूड बेलिंगहम ने इंग्लैंड की ओर से गोल दागने की शुरुआत की और बेलिंगहम ने 36वें और 38वें मिनट में लगातार 2 गोल दागकर टीम को 2-0 की बढ़त दिलाई. कप्तान हैरी केन ने 60वें मिनट में अपनी टीम के लिए 3रा गोल दागा. हालांकि मैक्सिको ने 42वें मिनट में जूलियन किन्योनेस के गोल से वापसी की और उम्मीद जगाई, लेकिन इंग्लैंड अपनी बढ़त निर्णायक समय तक बरकरार रखने में सफल रहा. यह मुकाबला एस्टाडियो एस्टेका स्टेडियम में खेला गया, जहां मैक्सिको को आखिरी हार साल 2013 में मिली थी. उसके बाद कल भाई वो हारे हैं, कल कहें आज कहें. तो साहब ये फुटबॉल की स्थिति थी. एक और खबर जो इंग्लैंड से जुड़ी है, वो यहाँ पर के पॉलिटिकल पार्टियों को वो डोनेशन देने की एक सीमा तय कर दी गई है, 1,00,000 पाउंड से ज़्यादा नहीं दे सकेंगे. उनका कहना है कि यहाँ लोकतंत्र बिकाऊ नहीं है. वेल सेट. अब आइए इसके अलावा और जो खबरें हैं उन पर ध्यान देते हैं, खासकर भारत से आने वाली खबरें और मिडल ईस्ट से आने वाली खबरें. आइए सुनते हैं. ओडिशा पेट्रोल डीलर एसोसिएशन ने E20 पर केंद्र से दोबारा विचार करने की मांग की है. ओडिशा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट शशांक शेखर साहू ने ANI से कहा कि ईंधन में क्या चीज कितनी मात्रा में है, कितनी क्वांटिटी में है. अब समझते ना, E5, E10, E20, भाई इसे तय करने में डीलरों की कोई भूमिका नहीं होती, लेकिन मौजूदा पॉलिसी की वजह से हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. ये भारत की खबर है. यूक्रेन की राजधानी एक ही हफ्ते में रूस का दूसरा बड़ा हमला झेल रही है. 11 लोगों की मौत हुई है. शहर के शीर्ष सैन्य प्रशासक यानी फौजी एडमिनिस्ट्रेटर तिमूर तकाचेंको ने यह जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि 46 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें 5 बच्चे भी शामिल हैं. वहीं कीव इलाके के अन्य क्षेत्रों में भी 3 लोगों की मौत हुई है. इमरजेंसी अफसरान के मुताबिक बचाव अभियान 20 से ज्यादा जगहों पर जारी है, इस समय चल रहा है. भारत से आने वाली खबरों में अयोध्या में बैठक से पहले राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष ने एक पत्र जारी किया है और इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी से वो बहुत दुखी हैं, लेकिन उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है. वे इस मामले पर किसी को भी पॉलिटिक्स नहीं करने देंगे, ऐसा उन्हें विश्वास है. ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के आखिरी संस्कार से जुड़ी रस्में तेहरान में शुरू हो चुकी हैं। बड़ी तादाद में लोग उसमें शामिल होते दिखाई दे रहे हैं। जो पिक्चरें जारी की जा रही हैं उनमें बहुत बड़ी संख्या में लोग दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के लिए जुटे हुए हैं, और श्रद्धांजलि सभा में ट्रिब्यूट में सभा के बीच गाड़ियों का काफिला भी लोगों की भीड़ के बीच से गुजरता दिखाई दे रहा है। पश्चिमी बंगाल में राज्यसभा की 3 सीटों पर बाई इलेक्शन यानी उपचुनाव 24 जुलाई को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने आज इस बात का ऐलान किया है कि ये सीटें तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी, अब उन पर उपचुनाव होंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राम नाम के ऊपर खुली लूट हो रही, ये कह रहे हैं कीर्ति आज़ाद। भाई कीर्ति आज़ाद टीएमसी के नेता हैं, लेकिन आपको शायद क्रिकेट से भी ये नाम जुड़ा हुआ महसूस होगा अगर आप बहुत देर से क्रिकेट फॉलो करते रहे हैं तो। तृणमूल कांग्रेस के नेता कीर्ति आज़ाद ने रिएक्ट किया है, उन्होंने कहा कि राम के नाम पर मंदिर में खुली लूट मची हुई है। नितिन नवीन के यूपी दौरे पर अखिलेश का तंज। ये नितिन नवीन भाई भारतीय जनता पार्टी के युवा अध्यक्ष हैं, और अखिलेश कह रहे हैं कि अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आए हैं दर्शन करने नहीं जाएंगे, दर्शन करने मतलब भगवान राम के, राम मंदिर के। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के उत्तर प्रदेश दौरे पर समाजवादी पार्टी के चीफ और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने ये तंज किया है। और फिर बता दें भाई फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने मेक्सिको को हराकर क्वार्टर फाइनल में एंट्री ले ली है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
1: ये है लाइका गोल्ड, टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।
2: वेलकम बैक टू द म्यूजिक। समाचारों की दुनिया से निकल करके भाई बहारों की दुनिया, सुरों की दुनिया, सुरताल के इस संसार में लौट आइए। सुनिए लता मंगेशकर की मधुर आवाज, फिल्म का नाम है प्यार झुकता नहीं।

बेला सुलाखे और सुरेश वाडकर गा रहे थे ये गीत। भाई धीरे धीरे हम खबरों के नजदीक आ रहे हैं, अंग्रेजी में समाचार सुनवाए जाएंगे आपको 11 बजे, उसके बाद होगा आज का विचार यानी चिंतन। लेकिन उससे पहले बता दें आज रणवीर सिंह अपना जन्मदिन मना रहे हैं। भाई नई फिल्मों के गीत तो हमारे कार्यक्रम में एंटर नहीं कर सकते, इसलिए रणवीर सिंह वो तातर तातर वाले भाई जन्मदिन की बिना संगीत के मुबारकबाद स्वीकार कीजिए। जन्मदिन मनाने वालों में और भी कई नाम हैं, श्वेता त्रिपाठी आज अपना जन्मदिन मना रही हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनता पार्टी के, भाई भारतीय जनसंघ होता था उन दिनों, उसके एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित नेता हैं, आज उनका भी जन्मदिन है। कोलकाता में जन्मे थे 1901 में। आमिर खान ने शादी कर ली, बोले के शाहरुख खान ने अगर गोरी से शादी की है तो हम भी अपनी जिंदगी में एक गोरी लेकर के आएंगे, तो उन्होंने गोरी नाम की एक महिला से शादी की है। मुबारक हो भाई आमिर जी।

स्वागत है आपका मनोरंजन प्रोग्राम की दूसरे दौर में। लाइका रेडियो नेटवर्क पर ये लाइका गोल्ड के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं। दिस इज मनोरंजन, और मनोरंजन में ये पड़ाव है चिंतन का। थॉट फॉर द डे, आज का विचार। आज के चिंतन में हम शामिल कर रहे हैं बोरमवुड से हर वर्ष फुल जो वही मेयर है उस क्षेत्र की परवीन रानी का भेजा आलेख। परवीन कहती है लोग बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, पूछते हैं कि थोड़े से अल्पकाल में ही लोकप्रियता की जिन सीढ़ियों को मैं एक के बाद एक पार कर रही हूं, तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण है सबके लिए मेरे मन में सम्मान, प्रेम भाव। और आज इस चिंतन को आप अपने प्रोग्राम में शामिल कीजिएगा, क्योंकि आज के दिन वो एक व्यक्तित्व का जन्मदिन है जिससे इस तरह की प्रेरणा हमें मिलती है, संदेश मिलता है, करुणा का भाव। बोले अगर किसी के प्रति आपके मन में नफरत है तो घृणा को घृणा से मत मिटाइए, करुणा से मिटाइए, प्रेम से, स्नेह से। आप किसी पराये को अपना बनाइए, थोड़ा सा अपनापन देंगे, देखना उसका भाव बदल जाएगा। कहती है एक घटना मैं लिख करके भेज रही हूं अपने प्रोग्राम में चिंतन में शामिल कीजिएगा। थैंक यू परवीन रानी जी। साथ ही आप कहती हैं कि हम अपने सारे परिवार की ओर से और अपने हरियाणवी ग्रुप की ओर से हरविंदर मलिक को लंदन में वेलकम कहते हैं। वो आए हुए हैं और छाए हुए हैं यहाँ। उनकी पेंटिंग्स की हमने एग्जीबिशन लगाई हुई है और बड़ी कामयाब चल रही है। बोरमवुड की वह अपनी एग्जीबिशन सेंटर में वो ये एग्जीबिशन चला रहे हैं। तो आज के चिंतन के बारे में वो कहती हैं कि एक बार एक व्यक्ति बहुत गुस्से में, बहुत नाराज एक भिक्षु के पास आया, एक महात्मा के पास आया। हिमालय की तलहटी में एक गांव था, वहां ये बूढ़ा भिक्षु रहता था। लोग दूर दूर से उसकी सराह लेने आते थे। एक नौजवान गुस्से में भरा हुआ उसके पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, मेरे पड़ोसी ने मेरी बहुत इंसल्ट की है, बहुत अपमान किया है मेरा, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। भिक्षु कुछ नहीं बोला, खामोश था। नौजवान बोला, बताइए ना, उस व्यक्ति से कैसे बदला लूं? इंसल्ट करके मेरा दिल दुखा गया है, मैं ना चैन से बैठ पा रहा हूं, ना रात को सो पा रहा हूं। भिक्षु ने कहा, मेरे साथ आओ। वो उस नौजवान को लेकर के वो भिक्षु यानी वो महात्मा नदी किनारे गया और वहां दो बड़े बड़े पत्थर पड़े थे। कहने लगा, इन्हें उठाओ। नौजवान ने कहा, इन पत्थरों को? हाँ हाँ उठाओ और अब मेरे साथ चलो। नौजवान दो बड़े बड़े पत्थर उठा करके उस भिक्षु महात्मा के साथ चल पड़ा। थोड़ी दूर तक जाते जाते वो थक गया, हाथ दर्द करने लगी। तो उसने कहा, महाराज जी, मैं इन्हें और नहीं उठा सकता, बहुत भारी है। भिक्षु मुस्कुराया और बोला, जब तुम जानते हो कि ये पत्थर भारी हैं, तो इन्हें छोड़ क्यों नहीं देते, इन्हें रख क्यों नहीं देते? नौजवान ने पत्थर नीचे रख दिए। उसने तुरंत हल्का पैन महसूस किया, जैसे आराम मिला। भिक्षु ने कहा, देखा, अच्छा लग रहा है ना? हां, नौजवान ने कहा। बोले, क्रोध और द्वेष भी ऐसे ही पत्थर हैं, ये नफरत भी एक ऐसा ही पत्थर है, जिसने तुम्हारा अपमान किया ना, वो तो अपने रास्ते चला गया, लेकिन उसका बोझ तुम अब तक अपने मन में उठाए घूम रहे हो। उसे क्षमा करना उसके लिए नहीं, अपने मन को मुक्त करने के लिए है। जब कोई व्यक्ति अपशब्द बोलता है, अपमान करता है,
उसे माफ करके आप सबसे पहले अपना भला करते हैं, क्योंकि आपका मन हल्का होता है और उस व्यक्ति को कभी न कभी जरूर अपने किए पर पश्चाताप होगा। नौजवान कुछ देर तक मौन रहा, फिर उसके चेहरे पर शांति उतर आई। उसने समझा कि सबसे बड़ी जीत किसी दूसरे को हराने में नहीं बल्कि उसे माफ करने में है, अपने क्रोध को छोड़ देने में है, इंसाफ करने में है। ये कहानी आपको बता दें कि दलाई लामा के विचार को दर्शाती है कि घृणा घृणा से नहीं केवल करुणा से ही समाप्त होती है। तो बहनों भाइयों, दलाई लामा ये एक ऐसा नाम है जो भारत में, चाइना में, एशिया में और पूरे विश्व में अपने विचारों के लिए प्रसिद्ध हैं। और आपको बता दें कि आज 6 जुलाई को दलाई लामा का जन्मदिन पड़ता है। ऐसे महात्मा, ऐसे बौद्ध संत, ऐसे भिक्षु जिनका 1935 में जन्म हुआ था और 2 साल की उम्र में ही घोषणा कर दी गई थी कि वो 14वें दलाई लामा होंगे और उसके बाद से एक संयमपूर्ण जीवन वो जी रहे हैं। दलाई लामा भैया, जो लामा होते हैं ना, उनके पंथ में ये बड़े इंपॉर्टेंट मॉन्क्स होते हैं, ये भिक्षु होते हैं, सन्यासी संत होते हैं और तिब्बतियन बुद्धिज्म के ये सर्वोच्च संत माने जाते हैं। दे आर हेडेड बाय द, ये कहेंगे वो ईश्वर के बाद इनका स्थान होता है। दलाई लामा के जन्मदिन पर न सिर्फ बौद्ध अनुयायियों को, आप तो जानते होंगे कि धर्मशाला में इनका निवास है क्योंकि चाइना से ये निर्वासित होकर के अब धर्मशाला में निवास करते हैं अपने अनुयायियों के साथ। वहां भी इनसे एक सवाल पूछा गया था कि चाइना ने आपसे आपका देश छीन लिया, तिब्बत से आप निकल करके यहां निर्वासित होकर के भारत में रह रहे हैं शरण लेकर के, आपको चाइना पर गुस्सा नहीं है? बोले बिल्कुल नहीं। आपको उनसे नफरत नहीं है? बोले नहीं। उनसे नफरत करके, उन पर गुस्सा करके मैं अपना अहित ही करूंगा। उन्होंने जो किया है वो उस पर कभी न कभी जरूर विचार करेंगे, लेकिन मैं अपनी शांति, अपना सुख चैन क्यों बर्बाद करूं? मन में नफरत को, गुस्से को, घृणा को जगह मत बनाने दो। जितना प्रेम परमात्मा ने हमारे भीतर भर के भेजा है, अंतरात्मा को उसे लुटाने दो। ईश्वर ने सबके भीतर बहुत सारा प्रेम भर करके हमें दुनिया में भेजा है, बांटते रहिए, कभी कम नहीं पड़ेगा।

0: चिंतन,
1: जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, दुनिया से नफरत समाप्त हो जाएगी। अब जितने युद्ध चल रहे हैं, जंगें लड़ी जा रही हैं, इनमें काम क्रोध लोभ लालच भाई किसी को सत्ता का मोह सता रहा है। कोई पद के लिए, कोई प्रतिष्ठा के लिए, कोई धन के लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लड़ाई झगड़े वैर विरोध मार काट, और कहीं कहीं तो धर्म का इस्तेमाल करके लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं। दलाई लामा कहते हैं कि घृणा का त्याग करें। आज उनका जन्मदिन है बहनों भाइयों, 14वें दलाई लामा, जो भारत के धर्मशाला नगर में निवास करते हैं अपने अनुयायियों के साथ चाइना से निर्वासित होकर के। और आप जानते हैं ये 14वें दलाई लामा हैं, इनके पंथ में जो है पहले से ही निश्चित कर दिया जाता है कि ये कोई बच्चा, ये दो साल के थे जब इन्हें दलाई लामा का पद जो है घोषित कर दिया गया था इनके लिए। और उसके बाद से भाई इनके विचारों से, इनके उपदेशों के कारण इन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है, अनेक सम्मान अनेक अवार्ड्स इनके नाम पर हैं, और इनके संदेशों को बहुत प्रकाशन मिल चुका है, बहुत तरह से स्थापित किया जा चुका है। 14वें दलाई लामा है ये। आज उनका जन्मदिन तो है भाई, पर जन्मदिन और भी अगर किसी का है, बाली जी के साथ साथ हमारे बाली ब्रह्मभट्ट भी आज अपने जन्मदिन मना रहे हैं। अब दलाई लामा तो साहब ये 6 जुलाई 1935 में पैदा हुए थे, अब अंदाजा लगा लीजिएगा 91 बरस के हो गए हैं। और बाली भाई की उम्र बताना अलाउड नहीं है भाई बस यंग मैन है ये समझ लीजिएगा। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू हिम। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। आपके घर परिवार में किसी का जन्मदिन है तो मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज के चिंतन के लिए आलेख जो सामग्री भिजवाने के लिए भाई हर वर्शिपफुल मेयर हैं, और खुद भी मेयर हैं और इनका बेटा भी मेयर है एक और अलग से, तो भाई दोनों माँ बेटों की ओर से आज का चिंतन भेजा गया, तुषार कुमार और परवीन रानी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके परिवार की ओर से आपके मेहमान हरविंदर मलिक जी का भी जोरदार स्वागत भाई, वो यूके में हैं तो हम उन्हें भी स्वागतम कहते हैं। चिंतन को समेटते हुए याद दिला दूं कि चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन का हिस्सा बनता है। कल एक और चिंतन आप सुनेंगे, आज का चिंतन समाप्त होता है।
0: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: State Bank of India UK. आज का रेट बता रहे हैं भाई, अगर आप पैसे अपनों को भिजवाना चाहते हैं तो आज एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग 127 इंडियन रुपीज मैक्सिमम। और साहब यू कैन एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप के माध्यम से भी अपनों को पैसे भिजवा सकते हैं। याद रखिएगा टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
2: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीस एंड सीज अप्लाई।
3: ये है लाइक अ गोल्ड
4: Like a radio.
2: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
1: और साहब काफी खींचातान के बाद यूं कहिए कि काफी वो रोमांचक मुकाबला रहा वर्ल्ड कप फुटबॉल में, जो क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करने के लिए इंग्लैंड और मैक्सिको के बीच। मैक्सिको आप जानते हैं मेज़बान भी है, तो इंग्लैंड ने मैक्सिको को 3-2 से हराकर आखिरी 8 टीमों में जगह बना ली है। और वह आखिरी 8 क्वार्टर फाइनल होता है, आखिरी 4 सेमीफाइनल और आखिरी 2 फाइनल टीमें होती हैं जो आखिरी 2 में शामिल होती हैं। तो ये मैच जो भाई यू समझे कई लोगों ने तो आज देखा अर्ली मॉर्निंग उठ करके, और कई लोग अभी तक उसकी झलक देख रहे हैं। दूसरे हाफ में 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रहा था इंग्लैंड, और उसके बाद भी उसने मैच पर अपनी पकड़ बनाए रखी, और 54वें मिनट में इंग्लैंड के डिफेंडर जॉरेल कॉम्सा ने भाई क्या कहें कि क्या किया था, बस टक्कर हुई एक खिलाड़ी से और रेफरी ने उन्हें रेड कार्ड दिखाया, और जिससे उनको बाहर बैठना पड़ा और इंग्लैंड को 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। लेकिन साहब 3-2 से मैक्सिको, मेज़बान मैक्सिको को हरा करके इंग्लैंड ने आखिरी 8 में यानी क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। हमारी दुआ है कि भाई सेमीफाइनल में भी और उसके बाद फाइनल में भी उन्हें जगह मिले। एक लंबा इंतज़ार हो गया, 1966 के बाद कप इधर नहीं आया है, तो बहुत सारे लोग दुआ कर रहे हैं इंग्लैंड की टीम के साथ, उनकी शुभकामनाएं हैं। तो ये है स्थिति फीफा में आज।
2: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
1: और ये भी याद दिला दें आपको भाई, ये हमारे जो स्पॉन्सर हैं रैक लॉ वाले, वो कहते हैं कि भूलना नहीं, यू कैन गेट योर 15 मिनट फ्री लीगल एडवाइस विद मेंशनिंग आवर रेडियोस नेम। अगर आप लाइका का नाम मेंशन करते हैं तो 15 मिनट की फ्री एडवाइस, फ्री कानूनी मशवरा आप उनसे ले सकते हैं।
2: दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स।

0: जहाँ जिंदगी वहाँ सैक्टर माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स.
1: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
2: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
3: Southall Travel, at all protected.
4: Gajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
5: Discover Gajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
4: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
5: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
4: Gajal's Couture Southall, where every occasion find its perfect style.
5: Visit gajalscouture.co.uk.
6: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
7: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे. कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस. कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208922.

0: भाई बहुत बढ़िया कवाली थी, लेकिन शराबियों को यह कवाली पसंद नहीं आएगी। दो किट पिला दे साकिया, बाकी मेरे से रोड़ दे, मतलब बाकी मेरे ऊपर बखेर दे, खिंडा दे, खत्म कर दे। अब कौन शराबी पसंद करेगा कि भाई इस तरह से इतनी कीमती चीज उनकी नजरों में जो है वेस्ट की जाए। दो कुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे ते रोड़ दे। काला सूरज था फिल्म का नाम, और नरेंद्र चंचल व साथियों की आवाज़ों में आपने ये कव्वाली नुमा भाई संगीत सुना। और इसके बाद आपको याद दिला दूं कि दोपहर बाद एक बजे तक ये सिलसिला जारी रहेगा। इस तरह के गीत मिले जुले, कुछ नशीले, कुछ चुटीले और कोई कुछ भड़कीले, कुछ अलग अलग रंगों में रंगे गीत जो है वो परोसे जाएंगे। बने रहिएगा। अगला गीत जो आ रहा है उसमें शिकायत है, शिकवे हैं, निराशा है, दुख है, भड़ास है, यूं कहिएगा।
1: This is Like a Gold, a part of the number one Asian commercial radio network in Greater London, the Leica Group. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: इतना।
1: अगर आपने संगम फिल्म देखी है तो भाई आपको याद आ रहा होगा वो प्रसंग। दोस्तों, शक दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में इसे घर बनाने ना दो, और कल तड़पना पड़े याद में जिनकी, रोक लो आज उनको जाने ना दो। और उसमें एक दोस्त जान पर खेल जाता है, अपने दोस्त का प्यार, उसकी पत्नी, उसकी प्रेमिका के लिए भाई दोबारा से जिंदा करने के लिए। राज कपूर, राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला, सुपर हिट फिल्म थी अपने दौर की, संगम।
2: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
4: Manoranjan with Ravi Sharma.
5: Like a gold.
2: Like a extra podcast update.
1: याद दिला दूं आपको भाई, लाइका एक्स्ट्रा हमारा नया एपिसोड आ गया है, और ये एपिसोड है पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 23। टाइटल है राइज इन विमेंस क्रिकेट। आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप अभी समाप्त हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया, तो ये दीप राजा होस्ट कर रहे हैं इस कार्यक्रम को, इस एपिसोड को, और ज़रूर देखिएगा। ये भाई आपको बता दूं कि बहुत सारी जानकारी विमेंस क्रिकेट के विषय में, और बहुत सारी बातें जो आपको जानने को मिलेंगी। वी डिस्कस हाउ करंट क्रिकेटर्स आर चैलेंजिंग भाई स्टेरियोटाइप्स एंड इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। कई महिलाएं भाई काफ़ी नाम कमा चुकी हैं, और काफ़ी अब तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड तो उतने ही पैसे जो वो मेल को देते उतने फीमेल खिलाड़ियों को भी दे रहे हैं, पर बहुत सारी दूसरी जानकारी इस वीमन क्रिकेट के बारे में आपको जानने को मिलेगी। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
2: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
4: Ye hai Lyca Gold.
5: Lyca Gold.
1: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays
6: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833
1: or visit TravelHubWorld.com.
7: TravelHub, best service with unbeatable price.
6: At all protected.
7: Visit TravelHubWorld.com.
8: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
9: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
8: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
9: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
8: Cashback remortgages. Your mortgage should work for you.
10: आपके सामने एक रेड बटन है।
11: दबा दिया।
10: नहीं दबाना था।
8: The madness is back. धमाल 4.
12: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
8: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in धमाल 4. Directed by Indra Kumar.
13: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी?
8: Get ready for the biggest family entertainer in cinemas worldwide from the 10th of July.
14: पता नहीं ऐसे dangerous situations में automatically आके कैसे आ जाता।
15: Location, location, location.
16: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
15: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
16: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
15: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
16: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
15: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
16: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
15: High appreciation.
16: In Dubai.
15: London. Good news. Aapka favorite iTech, ab TRS Cash and Carry, South Hall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. For iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall UB24AX. Once you visit, you come again and again.
0: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply. sonatours.co.uk 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of July and get $600 off. Call Sonatours on 0208-951-0111.
2: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Cool music for a super hot summertime on Leica Gold.

0: वरे सॉन्ग आशा भोसले शब्बीर कुमार गा रहे थे ये गीत भाई, और फिल्म का नाम था आग ही आग। लेकिन भाई ये आग बड़ी मीठी थी, ठंडी थी, वो जलाने वाली आग नहीं थी, मन को भाने वाली आग थी। संगीत में कभी कभी लगता था कि शब्बीर कुमार कितने सुरीले गायक कलाकार थे, और बाद के समय में भाई पता नहीं क्या हो गया, बस फिर गुमनामी के अंधेरों में खो गए कहीं। आशा जी वो तो भाई अंतिम समय तक गाती रहीं, हालांकि आखिरी के दिनों में वो भी आवाज़ बहुत कमज़ोर हो गई थी, शरीर से भी कमज़ोर हो गई थी, लेकिन सुरीली रहीं, वो सुर से बाहर नहीं गई। खान साहब उन्हें श्रद्धा से याद करते हुए बता दें कि एक के बाद एक दो गीत आपने बैक टू बैक सुने हैं। पहला गीत फिल्म पारस से लिया गया था, तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे, मुकेश और लता जी की आवाज़ों में। और दूसरा गीत जो है ये शब्बीर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में था। इसी बीच बहुत सारे संदेश आकर के हमारे स्क्रीन पर चिपक गए हैं, इनमें रंजन जी का, निर्मला जी का, हिना भारती जी का, इन सबको चिंतन बहुत पसंद आया। और भारती जी जो गीत आपको पसंद आया ना, यकीन मानिए वो आप ही के लिए था। सच्ची वही वाला भाई दिवे कौन सा गीत था वो, मतलब जो भी था वो आप ही का था। और दिनेश पोपट जी, मुकेश जी का गीत जब भी हम बजाते हैं आपकी याद आती है। शोभना राय जी, सो नाइस ऑफ यू। और गीता पारेख, ये क्या किया आपने, सारे संदेश लिखे और फिर मिटा दिए। भाई आपके घर परिवार में किसी का जन्मदिन है मुझे एहसास है, और मेरे क्या कहें कि गीत आस पास है आपके लिए, लेकिन आपने अब संदेश ही मिटा दिया, तो अब वो नाम, वो तारीख, वो उम्र, वो जो कुछ भी आपने लिखा होगा वो नहीं है मेरे सामने। मैंने मैंने हैप्पी रिटर्न शब्द दिया अगर कोई जन्मदिन मना रहा है आपके परिवार में टू। और भाई और भी अगर किसी के घर में किसी का कोई जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, हम आपके सेलिब्रेशंस में शामिल हैं। वत्सला कहती है जहाँ दिव्यता है वहाँ देव है, वहाँ भाव है, ये चिंतन पर है आपकी प्रतिक्रिया। हंसा जी, रानी जी, अर्जन, रागिनी, राजकुमार साहब, कीर्ति जी, और जे एस के, मतलब जय श्री कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। चिंतन आपको भी बहुत पसंद आया, क्या गर्मा गर्म रोटी आपने भेजी है, फूली हुई एकदम तवे के ऊपर है सीधी, बस सिर्फ देख सकता हूँ खा नहीं सकता, सब्जी भी साथ में है। थैंक यू, थैंक यू कीर्ति, सहर जी, पम्मी जी और सारा जी, नैना शाह जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको SBI इस समय क्या रेट दे रहे हैं पाउंड का।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK. याद दिला रहे हैं भाई, अगर आप पैसे भिजवाना चाहते हैं अपनों को तो भारतीय मुद्रा में एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग 127 रुपीज मैक्सिमम। और साथ में कह रहे हैं डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच, ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज़ एंड सीज़ अप्लाई। This is like a gold.

0: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
2: वेल भाई, पहले तो बता दें कि इस सप्ताह के कलाकार हैं शकील बदायूनी साहब, जैसा कि अपने शहर का नाम भी अमर कर देते हैं ये जो कवि लोग हैं, शायर लोग हैं, गीतकार हैं। तो जैसे साथी लुधियानवी, हसरत जयपुरी, मजरूह सुल्तानपुरी, तो इनके शहर का नाम, इनके कस्बे का नाम, इनके गांव का नाम वो भी मशहूर हो जाता है। शकील बदायूनी साहब बदायूं के रहने वाले थे, मुंबई पहुंचे और साहब आरंभिक दिनों में जो गीत इनके फेमस हुए उनमें से एक हमने अभी आपको सुनवाया। जानते हैं किसकी आवाज़ थी ये आवाज़? टुनटुन की थी। वो टुनटुन जो भाई अपने भारी भरकम शरीर के कारण कॉमेडी करती थी फिल्मी पर्दे पर, लेकिन वो इतनी अच्छी गायिका भी थी। वो अलग नाम से गाती थी, उमा देवी, दैट वॉज हर सिंगर्स नेम, एज अ सिंगर उमा देवी कहलाती थी। तो उनकी आवाज़ में शकील बदायूनी का लिखा ये गीत आपने सुना। और भाई बहुत सारे गीत आप सुनेंगे शकील साहब की कलम से जन्मे हुए, क्योंकि वो इस सप्ताह के कलाकार हैं। तो साहब अब आगे बढ़ते हैं और गीत सुनवाते हैं आपको। ये स्पॉन्सर्ड है गीत, एकदम ऐसा लगता है जैसे हम साउथ इंडियन संगीत के नजदीक पहुंच गए हैं। आई आई यो कर्नाटक म्यूजिक।

0: वरे सॉन्ग लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी गा रहे थे ये गीत, और कौन सुनवा रहे थे? Feel Good Track
1: brought to you by Dairy Valley. Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Ye hai Laika Gold. Women's Cricket Updates, presented by Carmel Prabhakar, are brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
3: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. robothink.co.uk/Leica.
0: विमेंस क्रिकेट अपडेट्स देने के लिए कमल प्रभाकर हमारे एक्सपर्ट भाई क्रिकेटर जो हैं वो लाइन पे है ना। कमल जी क्या हुआ, दो दो वर्ल्ड कप चल रहे हैं, फुटबॉल का अभी चल रहा है और वो जो क्रिकेट का है महिलाओं का, उसका किसी को ख्याल ही नहीं है? एक मैं ही हूँ जो फिक्र करता हूँ या थोड़ी बहुत आप करते हैं? महिलाओं को किसी की मतलब महिलाओं की किसी को चिंता नहीं है, आपको है कमल जी?
4: देखो रवि जी, हाँ जी, पहले तो वेलकम बैक फ्रॉम योर हॉलीडेज। आप भी हॉलीडे चले गए जब वर्ल्ड कप चल रहा है तो एनीवेयर। बट देखो विमेन वर्ल्ड कप तो बहुत ही आगे निकल गया है। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप ऑफ लेडीज, और क्या स्किल खेल रहे, बेहतरीन बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और फिटनेस जो है। तो कल जो इंग्लैंड खेले, इंग्लैंड ने 154 नॉट इनफ रन। जब इतना रन हुआ तो मैंने कहा ये तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया की गेम है। ऑस्ट्रेलिया वेरी स्ट्रॉन्ग, अनबीटन, तो एडवांटेज इंग्लैंड का था, होम ग्राउंड थी और सारे सपोर्टर भी थे। बट ऑस्ट्रेलिया ने बारी जो खेली और बैटिंग इतनी स्टाइलिश से करी, तो रवि जी 153/3 17 ओवर्स मैं खत्म कर दिया, मतलब 3 ओवर 2 स्पेयर। बट बहुत ही अच्छा रहा, बहुत टूर्नामेंट, नियरली 28,000 पीपल थे वहाँ, एक्सेप्ट फॉर आप नहीं थे।
0: जी जी जी, ना बस मैं नहीं था, मैं दिल से था, लेकिन क्या करें बे, महिलाओं को हारते हुए मैं नहीं देख सकता। खासकर इंग्लैंड की महिलाएं, उससे पहले इंडिया की महिलाएं और दूसरी भी टीम है, ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रांग टीम है, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन अब अगले वर्ल्ड कप तक का इंतजार कितना, कब होगा नेक्स्ट वर्ल्ड कप महिलाओं का, विमेंस का?
4: अभी तो ये होता है कि देखो हर दो साल या तीन साल बाद आता है, तो अभी तो T50 ओवर का गेम वो आएगा नेक्स्ट वर्ल्ड कप, पर उससे पहले आज ये टेस्ट मैच है इंडिया का और इंग्लैंड में, लॉर्ड्स में है, और फ्राइडे को स्टार्ट हो रहा है वो टेस्ट मैच है।
0: क्या बात,
4: 5 दिन का
0: जबरदस्त होगा ये भी, तो लॉर्ड्स में खेला गया ना फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच, लॉर्ड्स में था ना?
4: हाँ जी लॉर्ड में था। और मुझे एक मौका मिला है, अभी तो मैं बता दूं को

0: you so much to our listeners for listening like a gold and like a radio
1: Network.
0: And all your updates from me and Kamal Prabhakar, your host and those. And Ravi ji always. So Ravi ji कोई ना कोई क्रिकेट की अपडेट हम लोग करते रहेंगे.
1: देते रहेंगे हाँ क्रिकेट में बहुत अच्छा रहा मुकाबला. देखिए जीत तो क्रिकेट की हुई है, ऑस्ट्रेलिया जीता है अच्छी बात है, लेकिन आने वाले मैचेस में भी हम आपके एक्सपर्ट कमेंट्स जो है वो जोड़ते रहेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू वेरी मच.
0: और रवि जी और लेट्स से कांग्रेचुलेशन टू इंग्लैंड फॉर विनिंग लास्ट नाइट. बहुत अच्छा मेक्सिको के साथ फुटबॉल मैच था.
1: फुटबॉल कितने रन से जीता?
0: फुटबॉल 3-2 में. 3-2 में जीता.
1: 3-2 रन से जीता. ओके अभी आगे अभी अभी होगा क्वार्टर फाइनल ना?
0: हाँ जी क्वार्टर फाइनल होगा.
1: किसके साथ?
0: नॉर्वे
1: के साथ. वैसे नॉर्वे की टीम भी बता दूं आपको कमजोर नहीं है. नॉर्वे वर्सेस आई थिंक जो ब्राजील हुआ है उसको देख के लगता है कि काफी स्ट्रांग टीम है नॉर्वे की. चलो ऑल द बेस्ट.
0: ऑल द बेस्ट एंड वेलकम बैक.
1: थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. कीप इन टच. बहुत बहुत धन्यवाद भाई. नॉर्वे वर्सेज इंग्लैंड कई मैच पर सबकी निगाहें लगी हैं. वो फुटबॉल का है लेकिन क्रिकेट के लिए हमारे एक्सपर्ट कमेंटेटर आगे आने वाले मैचेस में भी जुड़े रहेंगे कमल प्रभाकर. थैंक यू वेरी मच कमल.
2: दिस अपडेट वाज ब्रॉट टू यू बाय TW Pays. विजिट twpays.com/Leica फॉर अ चांस टू विन अ फ्री कार्ड टर्मिनल. T's and C's apply.
3: एंड RoboThink. दिस समर गिव योर चाइल्ड अ हेड स्टार्ट इन AI, रोबोटिक्स एंड कोडिंग. प्लेसेस आर लिमिटेड. सेव 10% ऑन फुल वीक समर camp bookings with code LIKA10 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
4: ye hai LIKA gold.
5: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: जर्मनी में नीलम जी सुन रही हैं हमें। नीलम जी बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और जैस्मीन थैंक यू वेरी मच, महेंद्र पटेल क्रोइडन में हमारे साथ हैं। मिसेस शेख कह रही हैं बाली जी को हमारी ओर से जन्मदिन की बधाई भिजवाइए। भाई आज उनका जन्मदिन है और आप सब की ओर से उनकी लंबी उम्र की दुआ करते हुए हम मिसेस शेख की ओर से खासकर बाली भाई को हैप्पी बर्थडे कहते हैं। रंजन थैंक यू वेरी मच, आपका संदेश भी मिला है। भाई तमाम जन्मदिन मनाने वालों को बहुत बहुत मुबारक। हॉलीडेज ब्रेक साउथ हॉल ट्रेवल की ओर से साउथ हॉल ट्रेवल वाले याद दिला रहे हैं। भाई हॉलीडेज़ के लिए बड़ा लोकप्रिय नाम है ये साउथ हॉल ट्रेवल, एंड दे आर प्लीज टू अनाउंस दैट द FCDO हैज लिफ्टेड इट्स एडवाइस अगेंस्ट ऑल बट एसेंशियल ट्रेवल टू दुबई। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल फॉर द मोस्ट कम्पिटिटिव दुबई डील्स ऑन 02085748410 एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
0: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 02087828833 और विजिट travelhubworld.com।
2: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: विजिट travelhubworld.com।
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube, prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
3: London, you asked and it's happening. Aditya Gadvi Garba Tour UK 2026.
5: Lattuke halo ne nandala.
3: At Watford Colosseum on Saturday 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue. Meetha khara, khara. Watford Colosseum on Friday 7th August 2026. Leica Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Gadvi live in London. Book now on AXS. Aditya Gadvi live in London at Watford Colosseum. Book now.
6: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना।
7: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
6: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
8: थिंक यू माइट बी ओवरपेइंग फॉर कार्ड पेमेंट्स? Most businesses don't realize until they compare. Send your latest statement to TW Pays and get a free comparison quote with the reply within 24 hours. Visit twpays.com/Leica. TW Pays, helping businesses keep more of what they earn.
9: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T&Cs apply.
10: Lotto from the National Lottery now gives you 2 chances to win with every ticket. So it could be you, and it could be you. You, and then the same you, again. You. One ticket, 2 chances to win. New Lotto. It could be you, and it could be you. See website for Lotto changes. Rules apply. Players must be 18 or over.
1: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
11: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 02071321458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk। टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

अच्छा किया नो कह दिया, वरना इनको उठाने के चक्कर में आपकी कमर तो गई थी बता दूं। सॉरी जी, विल यू फेरी मी, विल यू कैरी मी, विल यू मैरी मी, नो नो जी।

0: सब कह रहे हैं रवि जी नो नो कह देना, वरना वरना वरना क्या होगा, इतना डरते भी नहीं है हम वो कहते पंगा हो जाएगा थैंक यू सावधान करने के लिए। और भाइयों इस तरह के गीत, ये गीत में आवाज़ दे पहचानी आपने, आशा जी के साथ खुद अनु मलिक गा रहे थे, अनु मलिक जिनको कहते हैं लोग ए न्यू मलिक, जब गाने लगे कहते हैं अच्छा गा लेते हैं पर कम ही गाया करें थोड़ा।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a
3: gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Rates note कीजिए भाई, LemFi वाले बता रहे हैं कि एक पाउंड के बदले भारतीय मुद्रा में इन इंडियन करेंसी दे आर गिविंग 127.3 रुपीस, पाकिस्तानी 371.03 रुपीस, श्रीलंकन रुपए 446.99, बांग्लादेशी टका 164.47, अफगानी 84.78 एंड केनियन शिलिंग्स 172.5।
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Well, the gold is sold at the rate of... कुछ ऊपर नीचे नहीं हुआ, सेम 100.21 पाउंड्स पर ग्राम, 100 पाउंड और 21 पेंस का एक ग्राम सोना बिक रहा है।
3: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.

0: फिर तो आज मजा ही मजा है।
1: बॉली ब्रम्बा,
0: yes, thank you very much for all your wonderful messages. And Kajal started the ball rolling by announcing my birthday, and then Ravi Sharma ji and all the listeners who have actually sent me such wonderful messages. Shekhar ji, abhi aapka message aaya, aapke saath to weekend bhi bitaya maine. Thank you so much. And Hansa Vora ji, and then we got actually naam nahi likha hai, MS Khan, yes, your silent listener. Thank you Khan sahab, shukriya janab, thank you so much. And Rama Patel, and she's having a beautiful outing on a sunny day in London because she's due back very soon to Ahmedabad. Thank you for your wishes and all your help. Sunita Sharma ji, always. And अभी तक कार्ड मुझे नहीं मिला, पर मिल जाएगा। आई विल बी द फर्स्ट वन टू आंसर यू, एंड थैंक यू फॉर दैट। एंड पैमी जी फ्रॉम स्लाव, थैंक यू वेरी मच। राजेंद्र राज जी, संतोष जी, एंड नितिन जी फ्रॉम हैरो, एंड अनदर मैसेज फ्रॉम जी डी चोलेरा, a ग्रेट फ्रेंड एंड अ ग्रेट बडी, नेवर मिसेज माई बर्थडे। एंड फरीदा गुलाम अली जी, she always comes out with Yali Madad and Jai Shri Krishna. So I said Mola Ali Madad and Jai Shri Krishna. Thank you so much for your birthday wishes. And Danny, thank you buddy. Janamdin Mubarak, with lots of balloons there with happy birthday written on them. Tarla Mojaria, thank you so much. And we got Mitul Patel and Mahendra Patel. And we got Konsa Naam? Naam nahi likha kisi ne. तो मैं फाइंड आउट करके फिर आपको बताता हूँ। नंबर एंडिंग इन 264, प्लीज नाम लिखा करें। एंड हजरा जी, थैंक यू। रेनू जी, थैंक यू। जगदीश फ्रॉम बुशी, यस मैन ऑलवेज। कमर खान जी, क्या बात है, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, थैंक यू वेरी मच। एंड मैक मारू महेंद्रा, वूहू, थैंक यू थैंक यू। एंड हैप्पी बर्थडे, हैव अ गुड। Shamim Shafiq from Hayes, thank you so much. Door, door se messages aa rahe hain. Bharat Gangaram ji, my dugu, photo bhi bhej diya mere ko. Hamara photo, hamare bahut sare photos hai saath mein, mere birthday ke din bhi saath hai. Aur Sair ji, thank you very much. And Arjun ji, thank you very much. Happy birthday from Tahir. मेरा जिगरीम दोस्त और मेरा यार, एंड दिस इज ताहिर शाह, एंड देर इज अनदर ताहिर हसन। एंड दिनेश पोपड़ जी, एज ऑलवेज, इतने सालों से मेरा ब्रदर है वो, और विश करते रहते हैं हमेशा मेरी बर्थडे पे, थैंक यू सो मच। महेश जी, थैंक यू फॉर योर हैप्पी बर्थडे। कपिल फ्रॉम वॉटफर्ड, एंड नरेंद्र पंचाल जी, माई म्यूजिशियन फ्रेंड, एंड नितिन शाह जी, एंड अरुणा एंड भूपेंद्र पटेल, आपका सुबह सुबह मुझे मिल गया था मैसेज, थैंक यू सो मच। शशिकांत पंड्या, यस एंड फैमिली, थैंक यू। किरण देव जी एंड विजय गुनोवा जी, ओ माई गॉड। अहिर यादव, ओ आपने कोई रितु जी के लिए कोई फरमाइश भेजी थी, लेकिन वो तो आज नहीं है, सो सॉरी अहिर यादव जी, अगर मुझे रिक्वेस्ट भेजते तो मैं आपको शायद प्ले कर देता। हरिहरन जी का कॉन्सर्ट इतना हिट गया, इतना हिट गया, मैं क्या बोलूँ। उन्होंने एयरपोर्ट पे आज जाते जाते मेरे को हैप्पी बर्थडे का मैसेज वो रिकॉर्ड करके गए, और उन्होंने ये कहा,
2: Happy birthday to you, Bali. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Bali. Happy birthday to you. God bless you, Bali. Have a great day. Have a great year. See ya.
0: Oh, that was so fabulous of him. He really surprised me with that message, and so wonderful of him. And Bina Mistry, yes, she sent me Bali, and she sent me a message saying happy birthday to me. So many people sending me happy birthday. And yesterday, Amrita Singh's concert was a super duper hit at the same hall again where I had gone day before yesterday for Hariharan Ji's concert. And everything went according to plan, and I want to congratulate Ashish Mathurji and Viba Mathurji for a successful concert that they worked for day and night, sweating away, but it was all worth it at the end of the day. And not only that, yesterday Amrita Singh, she performed for 3 hours, a single voice for 3 hours, and she really sang her heart out. Everybody, I think, was so happy with the concert yesterday as well. She sang everything from Punjabi to Bollywood to, you can say, Kirtan. And she started off with her prayers, Ek Onkar. And that was so soul-touching. And what a singer. She did Jagjit Singh Ji, and she did, I can keep on going, you know, with all the great names. About 20 legends she sang for, and she sang her own composition as well. And what wonderful musicians. And some of the musicians have played for me in Delhi and in Dubai, and they all came again reminding me, yaad hai 25 saal pehle फिर फोटो दिखाई गई, हमने फोटो खींची थी साथ में. एंड देन एवरीबडी एंडेड अप एट मधुज. यस, इवन आफ्टर द कॉन्सर्ट ऑफ हरिहरन जी वेंट टू मधुज इन मेफेयर, एंड ही इज ऑलवेज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ मी, लाइका, एवरीबडी. एंड हरिहरन जी वॉज वेरी हैप्पी with the food and everything. Thank you so much, Sanjay Anand of Madhus and Reena Ji. And they brought a cake yesterday for me. And Gurinder Chadda Ji was there. And I can keep on naming so many names. But then the main names, of course, I mentioned. And since 3 days, I've been going to Madhus, and it's been a treat. A total treat. And the biggest treat was England. On my birthday, I got my gift with England winning. Yes, it's coming home. Yes, it is. Abhi aage badhte hain, kyunki all songs for the next 2 hours are gonna be with claps, clapping. Yes, सुनते रहिएगा और तालियां बजाते रहिएगा. हमारे हिंदुस्तानी कल्चर में जो भी गाने होते हैं उसमें ऑडियंसेस साथ में बैठ के हमेशा तालियां बजाते हैं, एंड द आर्टिस्ट गेट्स पेप्ड अप. यस, वैसे वैसे गाने मैंने चुने हैं. तो हो जाए, लेट्स गेट अहेड विद द शो.
3: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Looking at the SBI rates today, we have got £1 in British sterling, which can get you up to 127 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
3: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
4: Gold Afternoons is sponsored by Jemin Foods, the authentic taste of India. From classic snacks to new flavors, find your favorites at your nearest Asian store.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: Kajal's Couture. For every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
8: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
7: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
8: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
7: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
8: Visit kajalscouture.co.uk.
9: Two businesses.
10: Same town.
9: Same service.
10: One appears on page one of Google.
9: The other doesn't.
10: Guess which one gets the customer?
9: The truth is brutal.
10: The first page of Google gets the business.
9: Everyone else gets what's left.
10: So here's the real question.
9: When your customers search for what you sell, do they find you?
10: Visit heartyhanks.com and stop letting Google choose your competitors.
9: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
11: वेडिंग्स, सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
12: आपके सामने एक रेड बटन है,
13: दबा दिया।
12: नहीं दबाना था।
14: The madness is back, धमाल 4।
15: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
14: Starring अजय देवगन, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी। Return in धमाल 4, directed by इंदिरा कुमार।
16: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी।
14: Get ready for the biggest family entertainer in cinemas worldwide from the 10th of July.
17: पता नहीं ऐसे dangerous situations में automatically आगे कैसे आ जाता।
18: लंडन गुड न्यूज, आपका फेवरेट आईटेक अब TRS कैश एंड कैरी साउथ हॉल में। ह्यूज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विद बेटर प्राइसेस, परफेक्ट फॉर रिटेलर्स, ट्रेडर्स, टेकअवेज एंड केटरर्स। आईटेक इज ओपन 24/7 विद फ्री पार्किंग। फॉर आईटेक एट यूनिट 123 साउथ ब्रिज वे, साउथ हॉल, UB24AX। वंस यू विजिट, यू कम अगेन एंड अगेन।
19: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
20: Lotto from the National Lottery now gives you two chances to win with every ticket. So it could be you, and it could be you. You, and then the same you, again. You. One ticket, two chances to win. New Lotto. It could be you, and it could be you. See website for Lotto changes. Rules apply. Players must be 18 or older.
21: Like a Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Like a Gold aur online suno likeagold.com pe.
22: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
23: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: मर मर के लुट गए हम तो हसीनों पे भरोसा करके, हमें तो लूट लिया।
1: There you go, the final of the Taali Wala Gana. And my brother imitates Ismail Azad so really well.
2: Cool music for a super hot summertime on the Leica Radio Network.
1: शंकर जयकिशन का संगीत और शैलेंद्र की लिरिक्स पे फिल्म है रात और दिन। लता जी ने बड़ा खूबसूरत गाना गाया है, आवारा ए मेरे दिल। नेक्स्ट कम्स यादों की बारात।

0: Experienced tour operators for air, coach and cruise holidays. So now, whenever you plan for a holiday, plan with Serene Holidays.
1: Call Deepthi Pandya today.
0: 0116-266-2481. For more information, log on to sereneholidays.co.uk.
2: विल नहीं है ये रिस आपको नहीं लेना चाहिए। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन विल्स और प्रोबेट को फास्ट और आसान बनाते हैं। अभी कॉल करें 0208-907-2444। अपनी फैमिली को सिक्योर करें। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन 0208-907-2444।
3: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
4: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
3: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
4: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
3: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस।
4: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
5: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
6: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Like a Extra Podcast, be a part of the conversation. Details at likearadio.com and the Like a Radio mobile app. The Like a Radio Network, the perfect soundtrack for a British summer heatwave.

0: फर्स्ट एंड इट्स हैपनिंग आदित्य गढ़वी गरबा टूर यूके 2026
1: लटके हालो ने नंदला
0: एट वॉटफोर्ड कोलोसियम ऑन सैटरडे 8 अगस्त इज नाउ सोल्ड आउट बट ड्यू टू ह्यूज पब्लिक डिमांड वन मोर शो हैज बीन एडेड एट द सेम वेन्यू
1: मीठा खारा
0: वॉटफोर्ड कोलोसियम ऑन फ्राइडे 7th अगस्त 2026 लाइका रेडियो नेटवर्क इज प्राउड टू बी द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर आदित्य गढ़वी लाइव इन लंदन बुक नाउ ऑन AXS आदित्य गढ़वी लाइव इन लंदन एट वॉटफोर्ड कोलोसियम बुक नाउ
2: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy three nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another three nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100 Atoll Protected.
3: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
4: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's, and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
5: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
6: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइक अ गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी. 6th of July मंडे इवनिंग मनाते हैं हम, साथ मिलकर इसे बना देते हैं मोटिवेशनल मंडे. पूछे आप सबसे कैसे हैं आप सब. आय हाय हाय क्या बात है, वीकेंड हो चुका है एंड अब इस मंडे को हम अपने हिसाब से आगे दौड़ा रहे हैं. शाम हो गई, दिन निकल चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस. नया वीक, कुछ नए से आप और कुछ नए से हम. और नएपन का जो आगाज़ हमने इस आवर में किया था, पहले तो पूछा था और सोचा भी था कि आपसे प्यार करेगी नहीं हुँ? और फिर हमने कहा कि देखो ये कहाँ आ गए हम. मज़ा आया ना, देखो कैसे साथ में पूरी जर्नी चल रही है आपकी और मेरी. तो भाई अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुका है. ऑल माय लवली लवली प्यारे प्यारे लिसनर्स अराउंड द ग्लोब आ चुके हैं अपनी अपनी अटेंडेंस लगवाने. जी हाँ, मंडे को हम बनाएंगे खूबसूरत. हर रोज ही हम खूबसूरत बनाते हैं क्योंकि आप और हम सभी हैं बेहद खूबसूरत. तो कोई लाइफ थियोरी लाई हूँ? बिल्कुल लाई हूँ. कोई सवाल जवाब हैं ऐसे कैसे छोड़ दूँ बिना होमवर्क के आप सबको, ऐसे हो सकता है? अच्छा जी, वीकेंड कैसा रहा, इंटरेस्टिंग रहा आप लोगों का, क्या हटके ऐसे किया मुझे बताओ. फॉर मी आई डेफिनेटली वेंट टू वॉच हरिहरन का शो एंड नेक्स्ट डे यस इट वॉज प्रोडक्टिव फॉर मी. अगेन आई डिड समथिंग विच इज़ वेरी नियर एंड डियर टू माई हार्ट एंड वीकेंड वॉज वेरी नाइस. ऐसे पीसफुली अच्छे से गया एंड आज आने के लिए फिर से मैं उत्सुक थी क्योंकि मुझे यहाँ पे आके आप सबके साथ में गुफ्तगू करना बड़ा अच्छा लगता है. हो गया, चलिए अब मेन मुद्दे पे आते हैं, यानी कि आज का मेरा सवाल. आप अपने आप को किस टाइप की पर्सनालिटी डिस्क्राइब करेंगे, आप अपनी पर्सनालिटी कैसे बयां करेंगे, क्या आपकी पर्सनालिटी रिवर जैसी है यानी नदी जैसी है या आपकी पर्सनालिटी माउंटेन जैसी है. इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे तो मुझे ज़रूर बताइए हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर पर्सनालिटी, इज इट अ माउंटेन पर्सनालिटी और अ रिवर पर्सनालिटी. फॉर मी आई कैन डेफिनेटली से आई एम अ रिवर पर्सनालिटी.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 127 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: भाई जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। किसी न किसी लाइफ थियरी के बारे में मैं हर रोज़ बात करती हूँ, तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द बटरफ्लाई थियरी। एक छोटा बच्चा गार्डन में खेलता है और खेलते खेलते उसकी नज़र जाती है एक बहुत ही सुंदर तितली पे, दैट्स द बटरफ्लाई। वो धीरे से जाता है और उस तितली को पकड़ लेता है, पकड़ के अपनी हाथ में उसे छुपा के घर में ले आता है, क्योंकि वो अपनी मम्मी को बताना चाहता है कि देखो मैं कितनी सुंदर तितली पकड़ के लाया हूँ माँ। उसकी मम्मी को आवाज़ लगता है, मम्मा मम्मा। अब उसे डायरेक्टली अपनी मम्मी को वो तितली दिखानी होती है, छोटा सा बच्चा। मम्मा अपनी लगी है काम में, वो कहती है हाँ बेटा रुको, 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 6 मिनट 10 मिनट। वो बच्चा बोलता है, मम्मा देखो मैं आपके लिए क्या लेके आया था। और जब वो अपना हाथ खोल के दिखाता है तो वो सुंदर सी तितली उसके हाथ में होती है, लेकिन अब वो हिलती नहीं है, क्योंकि उसने जिस तरीके से उसे जकड़ रखा था, उसे पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिला, उसने अपनी हाथों की जो हथेली में जिस तरीके से छुपा रखा था उस तितली को ऑक्सीजन नहीं मिला। एंड यू कैन इमेजिन व्हाट हैपेंड। एक्चुअली यही सब हमारे रिश्तों में हो जाता है कि हमारे रिश्ते में हम किसी को इतना जकड़ के, इतना पकड़ के रखते हैं, सोचते हैं ये तो हमारा अपना है, देखो कितना सुंदर है, ये अब मेरे पास है ना, तो बस अब मैं ज़िंदगी भर खुश रहूँगा या खुश रहूँगी। एंड उस रिश्ते को हम ज़बरदस्ती जकड़ के रखना चाहते हैं। फ्री छोड़िए, अगर वो रिश्ता आपका था, अगर वो इंसान, वो व्यक्ति आपका था, तो आपके पास में ज़रूर आएगा। और कहते हैं ना, रिश्तों में ज़बरदस्ती ना किया करें, फ्री छोड़ दीजिए, स्पेस दीजिए एक दूसरे को, क्योंकि जब वो स्पेस दी जाती है ना और जब कमी महसूस होती है तो दोनों तरफ से लोगों को बराबर पता चलता है। तो अपनी जो तितली है उसे जकड़ के ना रखें, पकड़ के ना रखें, दे दीजिए खुला आसमान, वो पता नहीं कहाँ से घूम फिर के आए और आपके लिए कोई प्यारा सा तोहफा लेके आए। आई एम श्योर बहुत शॉर्ट में मैंने आज ये थियरी बताई है, लेकिन आप तक मैसेज पहुँच चुका है। आपके पार्टनर्स, आपके बच्चे, आपके दोस्त, आपके करियर, आपका पैसा, इन सबको फ्री रखिए। जकड़ के रखेंगे, पकड़ के रखेंगे ना, तो ये रिश्ता कहीं ना कहीं दम तोड़ देता है। कैसी लगी ये थ्योरी ज़रूर बताइएगा। यादों की बारात में अब आपको मैं ले चल रही हूँ CID फिल्म से ये गीत सुनाने के लिए।
0: ये है लाइका गोल्ड, The Evening Show with Ashwini. Yaadon ki Baarat.

0: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is Ashwini, in for Anisa Nazir on the evening show.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 Ealing Road Wembley. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
0: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
0: विजिट TravelHubWorld.com.
1: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhujar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram.
3: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code HamariRam10 for a 10% discount on all shows and tickets.
1: Exclusive radio partner Laika Radio.
4: London, you asked and it's happening. Aditya Gadvi Garba Tour UK 2026.
5: Latke halo ne nandala.
4: At Watford Colosseum on Saturday 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue.
5: Meetha khara,
4: Watford Colosseum on Friday 7th August 2026. Laika Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Gadvi live in London. Book now on AXS. Aditya Gadvi live in London at Watford Colosseum. Book now. London. Good news. Aapka favorite iTech ab TRS Cash and Carry South Hall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. Full iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB24AX. Once you visit, you come again and again.
6: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
1: Like a radio network. Proud hospitality partner, Ragasan. Like a gold. The perfect soundtrack for a British summer heatwave.

0: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 46 मिनट्स पास्ट 7। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। विधाता फिल्म से सुरेश वाडकर और अनवर की आवाज़ में सुनाया हाथों की चंद लकीरों का, एंड उसके पहले यादों की बारात में CID फिल्म से मोहम्मद रफ़ी, शमशाद बेगम और आशा भोसले की आवाज़ में लेके पहला पहला प्यार। जी तो मैंने आपसे पूछा है कि आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इज इट अ माउंटेन पर्सनालिटी और रिवर पर्सनालिटी। मेरी पर्सनालिटी तो बिल्कुल, मैंने कहा है कि आई एम अ रिवर पर्सनालिटी एंड माउंटेन कॉलिंग इज देयर फॉर मी, यू नो। अब माउंटेन कॉलिंग क्या होती है इसके बारे में मे बी कमिंग वीक में हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल चलते हैं करेंसी रेट्स के पीछे एंड वी विल बी टॉकिंग व्हाट इज माउंटेन पर्सनालिटी एंड रिवर पर्सनालिटी।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: For £1 you'll get 127.72 Indian rupee, 372.68 Pakistani rupee, 448.64 Sri Lankan rupee, 165.08 Bangladeshi taka, 85.24 Afghan Afghani, 173.11 Kenyan shilling, 1.33 US dollars.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Leica Gold, a part of the number one Asian commercial radio network in Greater London. The Leica Group. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £100.08 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
0: जी हाँ, तो अभी हम बात कर रहे हैं कि माउंटेन पर्सनालिटी और जो रिवर पर्सनालिटी होती है ये किस टाइप की पर्सनालिटीज होती हैं। सो माउंटेन पर्सनालिटी पीपल जो हैं दे टेंड टू बी इंट्रोवर्टेड थिंकर्स हु वैल्यू डीप इंट्रोस्पेक्शन, इंडिपेंडेंस एंड साइलेंस। ठीक है, तो सेल्फ सफिशिएंसी इनमें होती है, ये सोचते हैं कि भाई हम हैं, हम अपने आप में खुश हैं। ग्राउंडेड होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, अनप्लग्ड होते हैं। दे फ्रीक्वेंटली डिच द वर्चुअल वर्ल्ड टू डीपली कनेक्ट विद द फिजिकल एनवायरनमेंट। अभी रिवर पर्सनालिटी, ये लोग डायनामिक होते हैं, एडाप्टेबल होते हैं, रिलेंटलेस ड्राइव इनमें होता है। रिवर नेवर स्टॉप्स फॉर्जिंग पाथ्स टूवर्ड द ओशन। तो अपनी जगह कैसे ना कैसे रिवर बना के ओशन तक पहुँच ही जाती है। सो या दीज काइंड ऑफ पर्सनालिटीज आर ऑफन ड्रिवन, एनर्जेटिक, डेयरिंग इन देयर परस्यूट ऑफ गोल्स, फ्लोइंग एंड सोशल। वाइल माउंटेन्स ऑफर टॉवरिंग आइसोलेशन, रिवर्स कनेक्ट विद कम्युनिटीज, कटिंग थ्रू टाउन्स वैलीज। रिवर पीपल आर ऑफन मोर वाइब्रेंट, एक्सप्रेसिव एंड कम्फर्टेबल। सो ऑब्वियसली मैं आप लोगों को जब सवाल पूछ लेती हूँ उसके बाद कहीं ना कहीं मेरे सिर में और जहन में आता है कि अरे ढूंढा तो जाए इसका मतलब क्या होता है। सो जब डिटेल में पता चलता है कि ये सारी चीज़ें हैं, तो हाँ अब माउंटेन कॉलिंग क्या है फॉर मी, ये अभी नहीं, मैं भी कमिंग वीक में हम ज़रूर बात करेंगे। इस आवर का आखिरी गीत आप सबके लिए मैं लेके आई हूँ प्यासा सावन से, अगेन वन ऑफ माई फेवरेट गीत, लता मंगेशकर सुरेश वाडकर की आवाज़ में मेघारे मेघारे। बिल्कुल वॉल्यूम अप रखिए, मौसम ज़रा अभी थोड़ा ठीक ठाक हुआ होगा बाहर। जी हाँ, आई नो आज काफ़ी गर्मी थी, ठीक है यार अभी फ़िलहाल है तो है गर्मी। ओके, अब हम ये शो कम्प्लीटली इन्जॉय करेंगे। सेकेंड आवर में भी तो आप कहेंगे उफ आह वाह वाह क्या गीत है।
1: Ashwini, brightening up your weeknights. This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show.
3: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
4: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
5: South Carrefour Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
6: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
7: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
8: आपके सामने एक रेड बटन है. नहीं दबाना था.
9: The madness is back. धमाल 4.
10: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा.
9: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in धमाल 4. Directed by Indra Kumar.
11: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी.
9: Get ready for the biggest family entertainer in cinemas worldwide from the 10th of July.
12: पता नहीं ऐसे dangerous situation में automatically आके कैसे आ जाता.
13: Location, location, location.
14: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
13: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
14: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
13: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
14: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
13: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
14: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
13: High appreciation.
14: In Dubai.
15: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142. Sonatours.co.uk. 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of July and get 600 off. Call Sonatours on 020-8951-0111.
16: The Evening Show with Ashwini.
1: Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio.

0: वेलकम, दिस इज द सेकेंड आवर ऑफ द इवनिंग शो विद अश्विनी। इस आवर का आगाज हमने किया था कुछ कुछ होता है कि टाइटल ट्रैक से। व्हाट अ मेलोडियस ट्रैक दैट वन इज। अलका याग्निक उदित नारायण की आवाज में 1998 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। एंड इसके बाद धर्मवीर से 1977 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। हम बंजारों की बात मत पूछो, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज में ये गाना ना, मतलब जो प्यार किया सो प्यार किया, जो नफरत की सो नफरत की, मतलब एक तो नो नॉनसेंस चीज़ यहाँ पे और स्ट्रेट ऑन द फेस। हाँ, मतलब प्यार तो प्यार, नफरत तो नफरत। आई लाइक दैट, बिल्कुल। आगे भी चलेंगे, एज आई टोल्ड यू कि काफ़ी फैंटेबुलस प्लेलिस्ट आप सबके लिए लेके आई हूँ। फैंटेबुलस, फैंटेस्टिक प्लस फैबुलस मिला के बनता है फैंटेबुलस। ओके, अच्छा, एक चीज़ जो जब भी मेरे जहन में कोई चीज़ आती तो डेफिनेटली मैं आप सबसे उसके बारे में डिस्कस करती हूँ, बात करती हूँ, पूछती हूँ। और अगर कोई रेस्टोरेंट ओनर्स आप लोग अगर ये सुन रहे हैं तो एक निवेदन भी है मेरा, एंड आई नो उसके पीछे कुछ लॉजिस्टिक्स होंगे, कुछ लॉजिकल रीज़न है कि आप लोगों के यहाँ पे जो सीटिंग होती है वो आप लोग आइदर स्क्वायर वाले टेबल या रेक्टेंगुलर टेबल लगाते हैं। सो दैट इज़ ओके फॉर जब चार लोग आ रहे हैं या छः लोग आ रहे हैं या दो लोग आ रहे हैं। मुझे जनरली ऐसा होता है कि वेन एवर आई गो फॉर गेट टुगेदर विथ माई फ्रेंड्स, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि एक्चुअली राउंड टेबल जो होता है ना वो होना चाहिए, ताकि सभी एक दूसरे को देख सके, सभी एक दूसरे से बातें कर सके। अब कोई भी जब ये रेक्टेंगुलर टेबल्स पे हम लोग बैठते हैं तो जो आपके सामने हैं या जो आपके साइड में है, आप मैक्सिमम उनसे ही बात कर पाते हो। आपके राइट में, आपके लेफ्ट में, दूर दूर तक जो कोई बैठा है तो उनसे आपकी बातचीत नहीं होती। आई नो बिकॉज सर्व करने में ईजी होता है, पूरा जो स्पेस का अरेंजमेंट होता है सही होता है, बट आई ऑलवेज फील दिस कि यू नो व्हेन एवर आई गो टू इंडिया एंड आई मीट मैक्सिमम ऑफ माई फ्रेंड्स और फैमिलीज, तो हम लोग ये सीटिंग अरेंजमेंट को लेके मैं हमेशा बोलती हूँ यार प्लीज़ ना ऐसी जगह चलो जहाँ पे ना राउंड टेबल्स हों। आपको भी ऐसा लगता है बताइएगा।
1: This is Leica UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British shilling can get you up to 127 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।

0: Score Updates, brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates, and for other legal requirements.
1: Portugal and Spain के बीच में गेम शुरू हो चुका है. It's 22 minutes. दोनों में से किसी भी टीम ने अभी तक कोई गोल नहीं दागा है. Don't forget, you get your 15 minutes free legal advice with our sponsors, Rack Law, if you mention Laika.
0: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
1: Back to back, आप लोगों के messages, इतना appreciation और इतना ढेर सारा प्यार. इनग्रैटिट्यूड, आप सब लोग मेरा साथ दे रहे हैं. मेरा नाम है अश्विनी. मंडे से फ्राइडे शाम 7 से 10 रहता है आपका और मेरा साथ. भाई हमारे जो साइलेंट लिसनर्स हैं, हाँ सर आप, हाँ दीदी आप, बिल्कुल एक हाई हेलो वाला मैसेज भेज देंगे तो हमारे चेहरे की मुस्कान और बढ़ जाएगी. और ये मुस्कान कहाँ से आप देख सकते हैं, आप तो गए हो कि क्या आप तो रेडियो पे है, मेरी मुस्कान आपको सुनाई देगी, है ना. देखो जैसे अभी सुनाई देती है. साथ ही ये मुस्कान भी आप देख सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम है रेडियो वाली अश्विनी, बिल्कुल वहाँ देख सकते हैं. साथ ही हमारा लाइका गोल्ड रेडियो का इंस्टाग्राम है, वहाँ पर आप देख सकते हैं. साथ लाइका रेडियो मैनचेस्टर का हमारा इंस्टाग्राम है, बिल्कुल जाइए देखिए. हम लोग इतना इंजॉय करते हैं, हम लोग मतलब फिलहाल मैं, दो बड़े बड़े स्पीकर्स सिस्टम यहाँ पे जो लगे हैं और यहाँ पे सामने जो कंसोल लगा है, बस मेरा माइक और मेरा आइक. आई एम अ मराठी गर्ल, सो मराठी में कहा जाता है माझा माइक आणि माझा आइक, मतलब मेरा माइक और मेरी बात सुनो. हाँ हाँ, आपके पास में ऑप्शन ही नहीं है, सुनना ही पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट ट्रैक जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ, इट्स मोटिवेशनल मंडे. एक तो अपने आप को दे दो शाबाशी, जिंदगी के जिस भी पड़ाव पे आप हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं. सक्सेस की हर किसी की परिभाषा अलग अलग होती है, तो भाई उनके सक्सेस की परिभाषा उनको मुबारक जो मटेरियलिस्टिकली नाप तोल के देख रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कि आप सक्सेसफुल हो या नहीं. अगर आपको लगता है यू हैव ग्रोन एज अ पर्सन, कंपीट अपने आप से करिए. और अगर आप ग्रो हो चुके हैं अपने आप में, तो बस खुद को कंग्रेचुलेशन दो, अपनी पीठ थपथपाओ, अश्विनी का शो सुनो, खुश रहो. क्योंकि कुछ देर में हम बात करने वाले हैं गुड न्यूज अराउंड द वर्ल्ड, जिसके बारे में शायद ही कोई बात करता है, लेकिन हम यहाँ जरूर बात करेंगे.
0: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Chase gives you 2% cash back on your everyday spending.
3: Every day? Like Monday's train to work?
2: Yes.
3: Tuesday's big shop?
2: Yes again.
3: Wednesday's coffee treat?
2: Yes, cash back.
3: Thursday's lunch, Friday's brunch and Saturday's takeaway?
2: Yep, yep and yep.
3: Super.
2: Oh, nothing on Sundays.
3: I take it easy.
2: Lovely. Enjoy 2% cash back on debit or credit card spending on groceries, restaurants, everyday transport and fuel. Search Chase Bank. 18 plus UK residents. Chase current and saver accounts required. Maximum £20 per month. Eligibility qualification. Exceptions and T's and C's apply.
0: This is Ashwini, in for Anissa Nazir, on The Evening Show.
4: Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
5: Discover Kajal's Couture's

0: Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
1: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
0: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
1: Cargill's Couture, Southall, where every occasion finds its perfect style.
0: Visit cargillscouture.co.uk.
2: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
3: आपके सामने एक रेड बटन है
4: दबा दिया
3: नहीं दबाना था
5: द मैडनेस इज बैक धमाल 4
6: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा
5: स्टारिंग अजय देवगन अर्शद वारसी रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी रिटर्न इन धमाल 4 डायरेक्टेड बाय इंदिरा कुमार
7: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी
5: गेट रेडी फॉर द बिगेस्ट फैमिली एंटरटेनर इन सिनेमास वर्ल्ड वाइड फ्रॉम द 10th ऑफ जुलाई
8: पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशंस में ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता
9: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com टीज एंड सीज अप्लाई sonatours.co.uk जापान चेरी ब्लॉसम टूर इन मार्च एंड अप्रैल 2027 before the end of July and get up to 400 off. Call Sona Tours on 0208-951-0111.
10: Okay, Laura, from the top.
11: When your 9-year-old is an unexpected tuba prodigy and now you want to support her cheek-puffing talent, be a step ahead with Barclays Premier. With personalized financial planning and a dedicated advisor. Barclays, backing your future. Eligibility criteria apply. Investment products and services are provided by Barclays Bank PLC and its subsidiaries. Capital at risk.
12: Like a Goon, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagoon.com.
13: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
14: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
15: Emotion of the day.

0: इमोशन ऑफ द डे,
1: इमोशन ऑफ द डे,
2: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
4: इमोशन ऑफ द डे मोटिवेशनल मंडे में किशोर कुमार की आवाज़ में मुकद्दर का सिकंदर से सुनाया, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। एंड आई एम श्योर ये प्रोग्राम सुनते सुनते आप लोग हंसते भी हैं, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ों पे हम ऐसे बात करते हैं कि हंसी अपने आप निकल ही जाती है। ओके जी, तो नरेंद्र पाठक जी ने हमें याद दिलाया है मालवियन, जितने भी मालवियन लिविंग इन मालावी एंड अब्रॉड, अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू पाठक जी, आपने हमें याद दिलवाया टू विश एवरीबॉडी। देखिए, कोई भी देश के हम निवासी हो, लेकिन हम सभी यहाँ जुड़े हैं लाइका गोल्ड रेडियो से, एंड ये तो लंदन में है, एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर, और हम सभी हैं म्यूज़िकल फैमिली। तो ये म्यूज़िकल फैमिली म्यूज़िक सुनने के साथ साथ बहुत सारी अलग अलग चीज़ों पे भी बातें करती रहती हैं। एंड what I'm going to share now is the good news around the world, जिसे सुन के चलिए हमारे चेहरे पे थोड़ी मुस्कान और बढ़ जाएगी। So Australia's new program gives every family 3 free hours of electricity daily, even without solar panels. A floating school in Makako, Nigeria, lets the kids keep learning despite constant flooding. कितनी भी वहाँ पे floods आ जाए, लेकिन वहाँ की ये जो school है, they make it sure कि बच्चों के पढ़ाई में कोई खलल ना आए। In Poland, volunteers guide over 18,000 frogs across roads safely each night during migration. Seriously, जब रोड पे ये जो एनिमल्स होते हैं एंड when they cross, और जितनी स्पीड में गाड़ियाँ जाती हैं, तो thankfully yes, मतलब I'm so glad ना, लोग जब इतना डिटेल में सोचते हैं इन छोटे छोटे प्राणियों के बारे में। न्यूयॉर्क फैशन वीक हैज़ बैंड रियल फर ऑन इट्स रनवे। ब्राज़ील एंडेड मदर टू चाइल्ड HIV ट्रांसमिशन एंड हिट इट्स लोएस्ट मोर्टेलिटी रेट इन ईयर्स। बहुत सारी ऐसी और अच्छी न्यूज़ आप सुनेंगे। दिस इज़ द इवनिंग शो विद अश्विनी। अगला ट्रैक जो आपको सुनाने वाली है, ओहो हो क्या बात है, उफ, हीरा पन्ना से, पन्ना की तमन्ना।

0: Ashwini in for Anisa Nasir for the evening show.
1: Laika Gold.
2: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन Laika Gold रेडियो Laika रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड Laika रेडियो मिडलैंड्स पर.
3: हमारा एपिसोड नंबर 23 आ चुका है द राइज इन वुमेन्स क्रिकेट होस्टेड बाय दीप राजा. वी डिस्कस हाउ करंट क्रिकेटर्स आर चैलेंजिंग स्टीरियोटाइप्स एंड इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन. लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई यूट्यूब अमेज़न एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स.
4: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर. दिस इज अश्विनी इन फॉर अनीसा नज़ीर ऑन द इवनिंग शो.
5: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
6: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
6: विजिट travelhubworld.com.
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies. To trade, visit heraldplastic.com.
8: Hey, friends के साथ weekend party हो या खुद के साथ Netflix and chill, a desi tadka is total risk, है ना?
9: Well, she is talking about Jaimin Food potato chips, crunchy, tasty, and total desi swad in 4 mazedar flavors.
8: Crunch cannot wait, so visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
10: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com. कॉल 0208-767-7627.
11: Laika Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. This week's Laika Extra podcast episode, Deep Raja talks about the rise in women's cricket.
12: Have we done enough for women? What if not, what do we do?
13: Right, it's never enough, but there's a lot of work being done. There's so many programs now. So give some credit to the counties and the countries where they've got coaches, they've got scouts.
11: Laika Extra is here. Search for our podcast, Laika Extra, on all major streaming platforms. Ashwini, brightening up your weeknights.

0: Pika Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: For £1 you'll get 127.72 Indian rupee, 372.61 Pakistani rupee, 448.63 Sri Lankan rupee, 165.07 Bangladeshi taka, 85.36 Afghani, 173.1 Kenyan shilling, 1.33 US dollars.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Leica Gold.
0: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £100.02 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
1: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 47 मिनट्स पास्ट 8। आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी। सोचो ये वाला म्यूजिक, शोले फिल्म, आप और हम सब मिलके ये देखें और जैसे ये म्यूजिक आए हम सब मिलके उठ के डांस करना शुरू करें। अरे ये तो हम रोज सुनते हैं शाम 7 से 10 बजे के बीच। कैसे ना कुछ चीज़ें हमारे जहन में बैठ जाती हैं बिकॉज इट्स म्यूजिक, एंड ये म्यूजिक ही तो है जो हमें मदहोश कर देता है। सो सैटरडे इवेंट फॉर हरिहरन शो, हमारी लाइका की टीम भी थी वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। अब होता ये कि अगर आप 90s में बड़े हो रहे हैं और 90s के जब कुछ गीत हरिहरन गाते हैं तो यू जस्ट गेट दोज गूज बम्स एंड यू लाइक अरे यार उस टाइम पे यस ये हुआ था। कैसे एपिसोडिक मेमोरी होती है हम सब की व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक, है ना। म्यूजिक के साथ में होती है जो फ्रेग्रेंस होता है, स्मेल होता है, इनसे भी हमारे जो एक एपिसोडिक मेमोरी बन जाती है। एंड आप पहुंच जाते हैं उस इवेंट पे सीधे सीधे। एंड ऐसा कहा जाता है कि जब आप किसी भी जो भी परिस्थिति है, जो भी इवेंट चल रहा है, उसमें अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं तो आपकी याददाश्त बड़ी अच्छी रहती है। विथ मी माय फ्रेंड्स एंड फैमिली दे नेवर चैलेंज मी। मैं अपने मुँह मियाँ मिठू नहीं बन रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि मैं बहुत प्रेजेंट मोमेंट में रहती हूँ, इसीलिए कितनी भी पुरानी बात हो मैं उन्हें बता सकती हूँ और मुझे वो चैलेंज नहीं करते। माई फ्रेंड्स एंड फैमिली लाइक ना ना ना ना भाई, तेरी तो मेमोरी इतनी अच्छी है, हम तेरे को चैलेंज ही नहीं कर रहे हैं, हमको पता है तू बड़ी प्रेजेंट मोमेंट में रहती है। सो फॉर मी अभी जब मैं रेडियो में हूँ तो मैं कम्प्लीटली यहाँ पे हूँ आप लोगों के साथ में। अब और कोई दूसरा विचार, कोई दूसरा थॉट मैं उसे एंटरटेन नहीं करती। आई थिंक अगर ये फॉर्मूला आप और हम सभी सीख जाए ज़िंदगी में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम दूर कर सकते हैं। हम दुख में रहते हैं क्योंकि हम पास्ट के बारे में सोचते हैं, हम एंग्शियस होते हैं, एंजाइटी ट्रिगर करती है क्योंकि हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में एज ऑफ नाउ यू आर ब्रीदिंग, यू आर हेल्दी, यू कैन ट्यून इन टू दिस प्रोग्राम एंड यू कैन लिसन टू योर दोस्त अश्विनी। ओके, सो आई थिंक प्रेजेंट मोमेंट सबके लिए बड़ा अच्छा मोमेंट है, तो एंजॉय करते चलिए एंड चलते हैं आखिरी गीत की तरफ। वॉल्यूम अप रखिएगा, आई एम श्योर यू लव दिस ट्रैक।
0: Throwback is brought to you by Leica Gold 2. Bollywood classics non-stop on the new Leica Gold 2. Available at LeicaRadio.com, via Alexa, or by using our Leica Radio mobile app. This is Ashwini, in for Anissa Nazir, on The Evening Show.
3: Leica Gold.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
5: Na, na, na. लंदन यू आस्क्ड एंड इट्स हैपनिंग आदित्य गढ़वी गरबा टूर यूके 2026
6: लटके हालों ने नंदला
5: एट वॉटफोर्ड कोलोसियम ऑन सैटरडे 8 अगस्त इज नाउ सोल्ड आउट बट ड्यू टू ह्यूज पब्लिक डिमांड वन मोर शो हैज बीन एडेड एट द सेम वेन्यू
6: मीठा खारा
5: वॉटफोर्ड कोलोसियम ऑन फ्राइडे 7th अगस्त 2026 लाइका रेडियो नेटवर्क इज प्राउड टू बी द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर आदित्य गढ़वी लाइव इन लंदन बुक नाउ ऑन AXS आदित्य गढ़वी लाइव इन लंदन एट वॉटफोर्ड कोलोसियम बुक नाउ
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
8: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 02 03963 5757 Greens by Danube Prime Location
7: High Appreciation
8: in Dubai
9: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाए 02 08 39 0880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
10: कैरेटिनो बेटर Ghee, the healthier, low-price, cholesterol-free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
11: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 02071321458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk
12: द इवनिंग शो विद अश्विनी
13: फील गुड क्लासिक्स ऑल डे दिस इज लाइका गोल्ड

0: up your weeknights. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK Online and via the SBI UK branch.
1: Your £1 in British sterling can get you up to 127 Indian rupee. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
1: वेलकम, दिस इज द थर्ड आवर ऑफ द इवनिंग शो विद अश्विनी. इस आवर का आगाज हमने किया था सातवां आसमान, विच वॉज रिलीज इन 1992. इस फिल्म से तुम क्या मिले, व्हाट अ लवली एंड मेलोडियस ट्रैक दैट वन इज, उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज में. साथ ही हमने आपको सुनाया सीता और गीता इस फिल्म से, ओ साथी चल. मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये गीत आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में. अब अगला ट्रैक जो मैं सुनाने जा रही हूँ, दैट इज फ्रॉम द फिल्म महाल, विच वॉज रिलीज इन 1969, किशोर कुमार एंड आशा भोसले की आवाज़ में. अब ये भाई साहब जो हैं, इनका कहना है कि ये दुनिया वाले पूछेंगे मुलाकात हुई क्या बात हुई, ये बात किसी से ना कहना. क्यों क्यों ना कहना, इनके इरादे देखो कुछ सही नहीं लग रहे मुझे. सुनिए जरा और बाद में बताइए.
0: This is like a gold.

0: तो मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 27 मिनट्स पास्ट 9। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। व्हाट अ मेलोडियस ट्रैक, घराना फिल्म से सुनाया मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। आर्टिस्ट ऑफ द वीक है शकील बदायूनी, उन्हीं का लिखा हुआ है गीत। एंड पुराने गीतों का जो लिरिक्स हुआ करते थे, जिस तरीके से पुराने गीत लिखे जाते थे, आई ऑलवेज हैव दिस क्वेश्चन, जो लिरिसिस्ट लिखते होंगे कितनी चीज़ें उन्होंने अनुभव की होंगी, वो इश्क वो प्यार वो मोहब्बत कितना पायस कितना प्योर रहा होगा ना, इतने सुंदर शब्दों को अपनी कलम से लिखना कि हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, हज़ारों में कोई नहीं, मतलब एक इंसान को इतनी हद तक और इतनी शिद्दत से प्यार और मोहब्बत करना कि उसके आगे हज़ार लोग भी हमें कम लगे, ब्यूटीफुल। नेक्स्ट ट्रैक आप सबको सुना रही हूँ लता मंगेशकर की आवाज़ में फकीरा फिल्म से।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: This is Ashwini in for Anissa Nazir on the evening show.
1: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
2: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट travelhubworld.com
3: आपके सामने एक रेड बटन है
4: दबा दिया
3: नहीं दबाना था
5: द मैडनेस इज बैक धमाल 4
6: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा
5: स्टारिंग अजय देवगन अर्शद वारसी रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी रिटर्न इन धमाल 4 डायरेक्टेड बाय इंदिरा कुमार
7: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी
5: Get ready for the biggest family entertainer in cinemas worldwide from the 10th of July.
8: Pata nahi aise dangerous situations mein automatically aage kaise aa jata.
9: The future belongs to creators. At RoboThink Summer Camps, children build robots, learn coding, and future-ready skills. Leica listeners get 10% off full week bookings with code LEICA10. Kit package worth over £7,500. Visit book.robothink.co.uk/Leica.
10: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com टीज एंड सीज अप्लाई
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. The sun is out, currency updates, and so are the summer hits on Leica Gold. Send money to India, Pakistan, and Bangladesh swiftly from your phone.
11: For £1, you'll get 127.68 Indian rupee, 372.59 Pakistani rupee, 448.57 Sri Lankan rupee, 165.05 Bangladeshi taka, 85.19 Afghan Afghani, and 173.1 Kenyan shilling, 1.33 US dollars.
12: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, poojasweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
11: Gold is currently trading at £100.09 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, poojasweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
11: मिलाने की घड़ियां देखते हैं टाइम कितना हुआ है इट्स नियरली 41 मिनट्स पास्ट 9 गजलिया कव्वाली मैं क्या सुनाने वाली तो आज इस हफ्ता थोड़ा हम करते हैं कुछ अलग मैं आपको सुनाने वाली हूँ कव्वाली द बर्निंग ट्रेन से मोहम्मद रफ़ी एंड आशा भोसले की आवाज़ में पल दो पल एंड लास्ट गीत इस आवर का होगा तोहफा फिल्म से किशोर कुमार एंड आशा भोसले की आवाज़ में टाइम फॉर मी टू से टाटा बाय टू ऑल ऑफ यू बिल्कुल गुड नाइट सर्विस ओवरनाइट सर्विसेज सुनिएगा लाइका रेडियो 90s लाइका रेडियो पंजाबी लाइका गोल्ड 2 सुबह सवेरे आ जाती हैं हमारी काजल उनका साथ दीजिएगा उनकी प्यारी सी आवाज़ सुन के एंड अपना दिन शुरू कीजिएगा मैं मिलूंगी कल शाम आप सबसे सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ हमेशा की तरह यही कहूँगी प्यार दो प्यार लो एंड पावर तो किसी को बर्बाद करने के लिए लगता है ना आई एम श्योर आप में से कोई भी इल हार्टेड या अनकाइंड नहीं है अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखिए आई नो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो प्लीज़ कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड एंड जिंदगी इज़ वेरी ब्यूटिफुल लेट्स ट्राई नॉट टू कॉम्प्लिकेटेड टू मच दैट नोट आई हैव टू से टाइम फॉर मी टू से बाय बाय टेक केयर लव यू ऑल
13: ये है लाइका गोल्ड
14: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
1: Evening. How's your night shift going? Just a quick check-in from Acorn Insurance, the taxi specialists. We've been by your side for over 40 years, helping new drivers earn a no-claims bonus from day one and accepting up to 9 years no-claims from veteran cabbies. That's why we're the largest taxi insurance specialist in the UK. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Bye for now. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
3: गारंटेड
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
4: साउथ हॉल ट्रेवल
3: फोन 02085748410।
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 02089223444 our line.
6: वीजा प्रॉब्लम? इंतजार मत करें, हर डिले आपको महंगा पड़ सकता है। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन, असाइलम केसेस, अपील्स, स्किल्ड वर्कर वीजा, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस और रिफ्यूजल पर फास्ट काम करते हैं। अभी कॉल करें 02089072444। दैट्स 02089072444।
7: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
8: Four beers, please, garçon!
7: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
0: Laika Gold par har raat ki yahi reet. Purane magar sada bahar geet.

0: Leica Gold.
1: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
2: No more worries for me.
3: Southall Travel, at all protected.
4: London, you asked and it's happening. Aditya Garvi Garba Tour UK 2026.
5: Lutke halone nandala.
4: At Watford Colosseum on Saturday 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue. Watford Colosseum on Friday 7th August 2026. Leica Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Garvi live in London. Book now on AXS. Aditya Garvi live in London at Watford Colosseum. Book now.
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन.
7: लोकेशन लोकेशन लोकेशन.
8: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 0203963 757. Greens by Danube. Prime location.
7: High appreciation.
8: In Dubai.
9: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
10: आपके अपने लाइका गोल्ड पर.

0: Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
1: आपके सामने एक रेड बटन है.
2: दबा दिया.
1: नहीं दबाना था.
3: The madness is back. धमाल 4.
4: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा.
3: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in धमाल 4. Directed by Indra Kumar.
5: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी.
3: Get ready for the biggest family entertainer in cinemas worldwide from the 10th of July.
6: पता नहीं ऐसे dangerous situations में automatically आके कैसे आ जाता.
0: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में. रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ. हमारे राम.
7: बुक योर टिकट्स नाउ ऑन eventimapollo.co.uk एंड यूज कोड हमारे राम 10 फॉर 10% डिस्काउंट ऑन ऑल शोज एंड टिकट.
0: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक Car Radio.
8: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410. साउथहॉल ट्रेवल. Auto protected.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
9: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
10: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
9: High appreciation.
10: In Dubai.
11: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
12: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
11: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
12: And you didn't pay those massive roaming charges?
11: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
13: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100+ countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
14: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर.

0: Gold Nights. This is Leica Gold.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
2: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
1: high appreciation
2: in Dubai.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
0: साफो ट्रेवल ऑटो प्रोटेक्टेड। अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
4: लाइका गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदाबहार गीत।